तुम लोग 6 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और ठीक 37 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। भोर की इस मंगल बेला में आप सभी श्रोताओं का सहृदय स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजना

योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये भजन छाया गांगुली की आवाज़ में। ये पारंपरिक भजन तुलसीदास द्वारा रचित, संगीत जयदेव का था। अब सुनिए पारंपरिक भजन दिलराज कौर की आवाज़ में, संगीत भूपेंद्र का।

श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, ये जो भजन अभी आप सुन रहे हैं, ये दिलराज कौर की आवाज में सुन रहे हैं, भूपिंदर, माफ कीजिए, डीवी पलुस्कर की आवाज में ये पारंपरिक भजन आप सुन रहे हैं।

श्रोताओं, ये जो पारंपरिक भजन अभी आपने सुना डीवी पलुस्कर की आवाज में था, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं पारंपरिक भजन दिलराज कौर की आवाज में, संगीत भूपिंदर का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपको जानकारी दे रहे हैं आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर के बाद 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा मन्ना डे, सुरेश वाडकर और रंजना जोगलेकर का। 6:40 से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे। 6:55 से सुनिएगा संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से। 7:00 से कार्यक्रम सुबह सुबह। 7:05 से कृषि संकेत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषय किसानी में मल्चिंग पर आप बातचीत सुनेंगे। वाचक स्वर होगा श्री विपेन जैन का। 7:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। 7:20 से कार्यक्रम मन चाहे गीत। 7:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता। सुबह 8:00 से समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम लोक संगीत और 8:30 से चित्रपट संगीत। 10:00 से भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी रिले करेंगे हम। 10:05 से कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत आप सुन सकेंगे। 10:30 से सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम 11:00 से आप सुन सकेंगे मुंबई केंद्र से। दोपहर 2:10 से भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार और 2:15 से दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार का रिले हम करेंगे। शाम 5:00 से भोपाल केंद्र से सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां और 5:02 से कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 से कार्यक्रम संगीत सरिता का प्रसारण हम करेंगे। शाम 6:30 से सुनिएगा कार्यक्रम सदाबहार गीत। 6:45 से कार्यक्रम लोकरंग। 7:10 से भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार और 7:20 से कार्यक्रम किसानवाणी। आज रात 8:00 से सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 8:20 से कार्यक्रम संगीत सरिता। रात 8:45 से समय होगा समाचार संध्या के अनुप्रसारण का दिल्ली केंद्र से। रात

9 बजे से कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुन सकेंगे। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम रिले करेंगे मुंबई केंद्र से आज रात 9:30 से। रात 11 बजे से दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे। आज की प्रसारण सभा का समापन रात 11:10 पर होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:30 होने को है, बस कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे और आप सुन सकेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर मन्ना डे, सुरेश वाडकर और रंजना जोगलेकर का।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं, बस कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुनिए कार्यक्रम में पहला गीत कोहिनूर फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, शकील बदायूनी का लिखा हुआ, संगीत नौशाद का।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना तलत महमूद की आवाज़ में, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गीत था। बुल्लो सी रानी ने संगीत तैयार किया था, फिल्म का नाम था जोगन। कार्यक्रम में अब सुनिए दीदार फिल्म से दुर्रानी और शमशाद बेगम की आवाज़ में गीत। शकील बदायूनी का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत निर्देशन नौशाद का है।

श्रोताओं, समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में एक और गीत हम शामिल कर रहे हैं। देवदास फिल्म से मुबारक बेगम की आवाज में साहिर का लिखा हुआ, संगीत निर्देशन एसडी बर्मन का है। आपको बता दें, कार्यक्रम की ये आखिरी प्रस्तुति है और 6:55 से आप दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार का अनुप्रसारण सुन सकेंगे। तब तक आप आनंद लें देवदास फिल्म से इस गीत का।

0: श्रोताओं, ये जो गीत आप सुन रहे हैं देवदास फिल्म से सुन रहे हैं, मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर का लिखा हुआ, संगीत निर्देशन एसडी बर्मन का। और कुछ ही देर के बाद सुनिएगा संस्कृत में समाचार का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्ष्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापारनेतारः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्णे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम् मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य, तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता, यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं, पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम्, उल्लासः, पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः, प्रभावश्च सुनिश्चितः।

भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानां उपलब्धता सुनिश्चेतुं चतुस्सप्तति सहस्राधिकैक लक्ष क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटंस दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटंस दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।

अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं। उम्र भर ख्याली डरों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। शायद इंसान की सबसे थकाने वाली कैद वो नहीं होती जिसमें उसे कोई और बंद करे, सबसे कठिन कैद वो होती है जिसे वो खुद अपने भीतर बना लेता है। और अजीब बात यह है कि उस कैद की सलाखें दिखाई भी नहीं देती। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अदिति और आप सुन रहे हैं दैनिक वैचारिक कार्यक्रम सुबह सुबह। श्रोताओं, कई लोग अपनी जिंदगी में किसी बड़ी हार की वजह से नहीं रुकते, वो रुकते हैं उन कल्पनाओं की वजह से जो अभी हुई भी नहीं होती। कभी अपमान का डर, कभी असफलता का डर, कभी लोगों की राय का, और कभी इस बात का कि अगर हम अपने असली रूप में सामने आए तो शायद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। धीरे धीरे इंसान जीने से ज्यादा बचने लगता है, वो बोलने से पहले सोचता नहीं डरता है, वो आगे बढ़ने से पहले संभावना नहीं देखता खतरा देखता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसकी पूरी ऊर्जा जीवन बनाने में नहीं खुद को सुरक्षित रखने में खर्च होने लगती है। यही सबसे बड़ी विडंबना है श्रोताओं, जिस दर्द से बचने के लिए हम अपने चारों ओर इतने मानसिक कवच बना लेते हैं, वही कवच हमें जीवन से दूर करने लगते हैं। हम चोट तो कम खाते हैं लेकिन अनुभव भी कम करने लगते हैं। हम कम टूटते हैं लेकिन कम खुलते भी हैं। और शायद इसीलिए कुछ लोग बाहर से बहुत सामान्य दिखते हुए भी भीतर से थके हुए होते हैं, क्योंकि वो हर परिस्थिति में लड़ नहीं रहे होते, वो हर संभावना से पहले ही डर रहे होते हैं। लेकिन जीवन कभी पूरी गारंटी देकर नहीं आता, कोई भी व्यक्ति पूरी निश्चितता के साथ नहीं जीता। जो लोग खुलकर जीते दिखाई देते हैं वो भी डरते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को दिशा तय करने का अधिकार नहीं दिया। शायद सच्चा साहस बहुत शोर वाला नहीं होता श्रोताओं, कई बार वो सिर्फ इतना होता है कि इंसान अपने ही मन की बनाई हुई सीमाओं पर दोबारा सवाल करना शुरू कर दे, ये पूछना शुरू कर दे कि क्या सच में हर बार वही होगा जिससे मैं डर रहा हूं या मैं डर रही हूं, और अगर हो भी गया तो क्या सच में उससे उबर नहीं पाऊंगा या उबर नहीं पाऊंगी। अक्सर जवाब हमारी कल्पना से ज्यादा शांत होता है। शायद इसीलिए ये पंक्ति भीतर तक जाती है, क्योंकि ये सिर्फ डर की बात नहीं करती, ये उस जीवन की बात करती है जो डर की वजह से अधूरा रह गया। कितनी चीजें थी जो हम कर सकते थे, कितनी बातें थी जो हम कह सकते थे, कितने रास्ते थे जिन पर चला जा सकता था, लेकिन हम अपने ही मन के बनाए अंधेरों को सच मान बैठे। और शायद एक दिन पीछे मुड़कर इंसान को सबसे ज्यादा अफसोस इसी बात का होता है

कि जीवन उतना कठिन नहीं था जितना उसने अपने भीतर बना लिया था। विचार कीजिएगा श्रोताओं। इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक वैचारिक कार्यक्रम सुबह सुबह। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कृषि संकेत। श्रोताओं, कृषि संकेत कार्यक्रम में विषय है किसानी में मल्चिंग। वाचक स्वर है श्री विपिन जैन का।
1: जैसे अपन खेत की तैयारी करते हैं किसी भी फसल की कटाई की, ठीक है, कटाई करने के बाद उसकी अपन को जुताई कर देना चाहिए, ठीक है। जुताई करने के बाद जो नीचे वाली नमी है वो बनी रहती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा खेतों की नमी को बनाए रखते हैं। ये शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसको अपन मल्चिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यदि आप मल्चिंग में खेती करते हैं तो ये काली सीट रहती है, उसके द्वारा अपन खेत में बिछा लेते हैं और ड्रिप द्वारा उसमें सिंचाई करते हैं, तो उसका जो पानी रहता है वो अपना बहुत कम मात्रा में रहता है और बाष्पीकरण ना होने के कारण कम पानी में भी अपनी फसलें अच्छी होती हैं, ठीक है। ये हो गया अपना मल्चिंग कहते हैं। इसमें पॉलीथिन वगैरह लगानी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों में आपके पास मल्चिंग उपलब्ध भी नहीं है, तो आप बहुत देखते हैं कि अपन ने कटाई की, धान की कटाई की या और जैसे फसलें रहती हैं, सब्जी वाली फसलें रहती हैं, या आपका जो खरपतवार है, खरपतवार आपने उखाड़ लिया, वो आपका सूख गया। यदि आप खरपतवार का भी प्रयोग करें, जैसे सब्जी वाली फसलें लगा रहे या कुछ भी लगा रहे, तो उस खरपतवार को उखाड़ने के बाद यदि आप खेत में उसकी एक परत बना दें तो उसके द्वारा भी एक मल्चिंग का काम होता है। और मल्चिंग से सिर्फ पानी का बचाव नहीं होता, उसके द्वारा यदि आप मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो जो ज़मीन से उगने वाले खरपतवार हैं उनके लिए भी पानी या धूप नहीं मिलती है, तो नए जो उगने वाले खरपतवार हैं उससे भी निजात मिलता है। तो मल्चिंग का प्रयोग करें जिसके द्वारा पानी की जो उपलब्धता ज़्यादा रहेगी। यदि बात आती है इजराइल की, वहाँ पानी की उपलब्धता ना के बराबर है। अगर बात करेंगे अपने भारत में, तो यदि आप बात करें तो राजस्थान में जाएंगे, जलगांव जाएं, यहाँ भी पानी की उपलब्धता कम है। लेकिन सबसे अच्छी खेती यदि आप देखेंगे कम पानी में, तो वो इजराइल में हो रही है। तो उसके लिए क्या है कि पानी का सदुपयोग किस प्रकार से करें, ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो जो बहुत सारी फसलें रहती हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंचाई की जो विधियां हैं, एक तो आप खुला पानी देते हैं बहाव द्वारा, ठीक है। दूसरा यदि आप बात करते हैं तो स्प्रिंकलर की, और इसके बाद यदि तीसरी बात आती है तो टपक सिंचाई, जिसको अपन ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जिस विधि में आप जाते जाएंगे उस विधि में पानी का बचाव ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा यदि आप खुली सिंचाई देंगे तो पानी अपना सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद जैसे अपनी गेहूं की फसलें हैं और फसलें हैं, उनमें आप स्प्रिंकलर द्वारा पानी की सिंचाई कर लेंगे तो इससे उसका जो पानी लगने वाला है वो 50% हो जाता है, ठीक है। और यदि आप बात करें ड्रिप की, तो लगभग यदि आप ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो आप ये पानी 20% तक कम लगता है, क्योंकि ये सीधा पौधों की जड़ों के पास जाता है और इसकी उपयोगिता ज़्यादा रहती है। और सब्जी वाली फसलें हैं तो उसमें ड्रिप सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है। यदि आपको पानी बचाना है तो ड्रिप इरिगेशन पर ध्यान दें, और यदि अपनी अनाज वाली फसलें हैं तो स्प्रिंकलर का प्रयोग करें, जिसके द्वारा आप पानी निश्चित रूप से बचा सकते हैं और ज़्यादा ज़मीन में आप पानी अपना दे सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विषय था किसानी में मल्चिंग। वाचक स्वर

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज गया पहुंचेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीएसएफ को नई जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाओं के लिए व्यवस्थाओं का अध्ययन जारी। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। कल आरसीबी से होगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। यहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने बताया कि अब सिर्फ सीमा की रखवाली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की नई अवधारणा पर काम होगा। श्री शाह ने कहा,
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर, भोशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन

0: में कहा है कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार भी तैयार रखा गया है। किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिले इसके लिए अब तक करीब 9.76 करोड़ फार्मर आईटी भी बनाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम के सीमी कंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सीमी ने देश की पहली एज एआई चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप उन्नत 12 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। इसका इस्तेमाल निगरानी, ड्रोन, रोबोटिक्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत ये एक बड़ी कामयाबी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर योजना प्रदेश में रंग ला रही है। प्रदेश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं और 456 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 6 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। सरकार की तरफ से 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया
2: कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है।
0: भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल पति समर्थ सिंह और सास किरबाला सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सास पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। 12 मई की रात कटारा हिल्स में ट्विशा की मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कल परिवार ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा में ट्विशा की अस्थियां विसर्जित की। केंद्र सरकार ने पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जल्द ही यूनेस्को भेजा जाएगा। ये दर्जा मिलने के बाद पेंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ रिसर्च के लिए विदेशी फंडिंग भी मिलेगी। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने कल नई समय सारणी जारी की। पहले ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। 28 मई को उनका निधन हो गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री से नवाजा था। और अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच समेत 9 जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए, लेकिन गुजरात ने लक्ष्य 18 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ

53 गेंदों पर 104 रन की धमाकेदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे फाइनल में गुजरात का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2027 तक सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का काम जारी है। शिवपुरी में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में टीकाकरण महाअभियान की प्रगति का जायजा लिया। झाबुआ में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने इस साल दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य तय किया। आगरमालवा में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दोषी पाए गए लोगों पर अपर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। अनूपपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। ग्वालियर में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बचत का काम किया जा रहा है। डिंडौरी में किसानों को खाद अब ई टोकन प्रणाली के जरिए दी जाएगी ताकि समय पर और आसानी से उर्वरक मिल सके। पन्ना में गर्मियों में पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इंदौर के ग्राम आशापुरा में 10,000 गौमाताओं की देखभाल के लिए एक बड़ी गौशाला विकसित की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार, अभी आप सुन रहे थे भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज के इस कार्यक्रम का सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो साथी अदिति के साथ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है दिल दिया दर्द लिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत है। शकील बदायूनी का लिखा हुआ, संगीत नौशाद का है। पहले सुन लेते हैं गीत। गीत के उस पार फरमाइश करताओं के नाम जानेंगे।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुना अभी आपने और इस गीत को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। व्हाट्सएप पर टेक्स्ट के माध्यम से आप सभी ने फरमाइशें भेजी। पतरोड़ा से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और सुनील। पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा सिंह पाठक। बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश और नियति। भिलाई से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जौशान अहमद, शाहनवाज अहमद और सिद्दीकी परिवार के सदस्य। दमोह से पीहू रैकवार, कान्हा रैकवार, सृष्टि, राम, पूजा, मोहनी, पवन, गगन, खुशबू। मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक। गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फरमाइशकर्ताओं के नाम पहले आपसे साझा कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। बालाघाट से मुन्ना लाल पटले, माधुरी पटले, याचना और दीपांशु। लोहगढ़ से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज। सागर से भगत सिंह राजपूत, बबलू ठाकुर, उदय प्रताप, श्रीजी विजेता और इनके सभी साथी। महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा और मिखाइल और जैनब मुजावर। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। महाराष्ट्र येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल। रायगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू और तरुण यादव। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए जसपाल सिंह की आवाज़ में ये गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। फिल्म का नाम गीत गाता चल।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: इस रविवार सुबह 8:30 बजे सुनिए स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित बाल सभा।

श्रोताओं, कार्यक्रम मनचाहे गीत में अब अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने भेजी है व्हाट्सएप पर टेक्स्ट के माध्यम से। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाड़ो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, खरगोन से अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार, खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक, बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और वर्षा सुमन, छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा, सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान और जिवियम जैन। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में गीत अनजान का लिखा हुआ, आरडी बर्मन ने संगीत दिया है, फिल्म का नाम है महान।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में एक और फरमाइशी फिल्मी गीत हम शामिल कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा, संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश, छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना मोना, हनी, यश, आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं ये रात फिर ना आएगी फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में गीत। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा है, संगीत OP नैयर का है।

और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को अब हम कर रहे हैं संपन्न। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में पहला गैर फिल्मी गीत सुनिए। एल्बम का नाम है बातों में तेरा जिक्र। ओमर मलिक की आवाज में ये गीत है। ओमर मलिक और यूसुफ सालिमी ने इस गीत को लिखा है। संगीत डॉक्टर जेयूस का है।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: ऑडियो बायोग्राफी आशा भोसले। इस एल्बम से आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, खयाम का लिखा हुआ। हसन कमल ने इस गीत को संगीत दिया था। कार्यक्रम में अब सुनिए इकबाल सिद्दीकी और वंदना वाजपेयी की आवाज़ में गीत। संगीत है मकबूल अहमद साबरी का।
1: ये मोहब्बत की राहों के उस मुसाफिर का नगमा है जो हुस्न की शमा के कूचे तक सफर करता है और जिसके लिए शमा हर सुबह ये कहती है कि फिर आएगी शाम, रखे अल्लाह सलामत मेरे परवाने को। बेकरार लम्हों की रातों से गुजरकर एक नई शाम की पेशानी को चूमने वाला परवाना एक बार फिर शमा के दर तक पहुंचना चाहता है।

और श्रोता उसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता को हम संपन्न कर रहे हैं। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार

0: 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं।

0: कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3rd स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। मैं

म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कुछ बुंदेली लोकगीत, लोक संगीत। और शुरुआत करते हैं इस लोकगीत से अशोक गुप्ता की आवाज़ में।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

श्रोताओं, ये लोकगीत अभी आपने सुना रज्जो राजा की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं पर्यावरण गीत। आवाज है रमेश बाबू सोनी की।

श्रोताओं, रमेश बाबू सोनी की आवाज़ में ये पर्यावरण गीत अभी आपने सुना और इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत को हम कर रहे हैं संपन्न।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता रात ये अब जो आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत संगीत। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और आपको पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं रेखा भारद्वाज की आवाज़ में। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है बर्फी।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: इस रविवार सुबह 8:30 बजे सुनिए स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित बाल सभा।
0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में गीत, जावेद अख्तर का लिखा हुआ। शंकर एहसान लॉय ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है क्यों हो गया ना।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म न्यूयॉर्क से सुनिधि चौहान की आवाज में गीत। संदीप श्रीवास्तव ने इस गीत को लिखा है और संगीत है प्रीतम का।

न्यूयॉर्क फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे संदीप श्रीवास्तव और संगीतकार थे प्रीतम। कार्यक्रम में अब सुनिए रईस फिल्म से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज़ में गीत। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है, संगीत प्रीतम का है।

फिल्म रईस से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज़ में, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और मधुश्री की आवाज़ में गीत। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, संगीत AR रहमान का है, फिल्म का नाम है किसना।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को है। अब सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कलर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाजें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बे ख्याल हो यूं ही चूलिया किसी ने।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
3: जाने क्यों ना हम बाबा करते हैं।
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा बहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हीरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम हीरोपंती 2।
1: The fucker, the fucker, so

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे, पूरी होश बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: क्या हाहाकार? तेरे बाप का राजा क्या?
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर इससे गलती हुई है।
2: क्या बात करें सर,
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
1: अरे यार तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की बात?
4: ना ना, दोस्त है तो घर पे आ।
1: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
5: क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी क्या?
1: अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
5: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
1: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।
6: हस्ता

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं। लेकिन परेश रावल का काम नहीं बना। पटेल

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मोरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए। धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

0: परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ए इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें
2: परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सुनो बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है उमल?
3: डैडी जी मेरा नाम परिमल नहीं अनमोल है।
1: ए यार तेरे को क्या हो गया चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है और मुझे अभी बताती हो तुम? ले अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस? अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस।
2: गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
4: भैया आप गांव में घर है ना आपके?
5: नहीं है। क्यों?
4: नहीं क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया
5: है?
4: तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
6: देख राजू जबान को लगाम दे, समझा?
4: देखा चोर की दाढ़ी में तिनका।
5: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
7: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
4: ये इसके दिल में खोट है।
6: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
4: हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
6: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
4: हाँ तो करना तू।
6: हाँ तो तू भी करना।
4: हाँ तो कागज लेके आना तू।
6: तू कागज ले आ।
4: अरे मैं क्यों लेके आऊं?
6: मैं क्यों?
4: तुम दो मिनट, दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ।
5: इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को। नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
4: ये लो पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
6: बताओ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: क्या हुआ?
6: आपको गाना सुनाई दिया?
7: गाना?
4: ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ साइन नहीं करने वाला।
7: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे। साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
4: कौन सा गाना
7: साफ सुनाई दे रहा है?
4: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ उसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो उसको।
7: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना गाना लगा ले, साइन कर रहे गाने।
9: हेलो
4: हेलो, देवी प्रसाद?
9: नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
4: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
9: वो तो मैं खा गया।
4: खा गए?
9: हाँ वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
0: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा

0: फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
1: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
0: पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं, और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: राजा।
1: हीरा फेरी फिर हीरा फेरी, आँखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
2: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
3: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डाके?
2: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ियाँ जो तुम्हारी इस गोल घूमर जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
1: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
4: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब यह छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी। हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है, घर एकदम शमशान हो गया था। और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
1: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
5: मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या काम दुकान पे बेच के आया है साला बेरा? इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। हाँ, ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है?
6: लिसन जेंटलमैन।
5: लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
6: I'm sorry.
5: अबे सॉरी क्या? इंडिया समझा? हाँ, गुना करो, सॉरी बोलो।
7: क्या हुआ जी?
5: अब ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझावी समझावी ने थकी गया, इधर कचरा नहीं डालने का। इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
1: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं, उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माय गॉड। ये फिल्म

0: गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
1: किसे भेजनी है नोटिस?
2: भगवान को।
1: मिस्टर भगवान? सरनेम?
2: पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
1: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
2: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
1: अच्छा। है?

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी। आज इसमें आप सुनेंगे हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोकेश गौर का है, वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं हरदा जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता लोमेश कुमार कौर ने। पिछले एक महीने में जिले में क्या कुछ खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आम जनता किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सी योजनाएं आकार लेंगी, किन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं और क्या हैं वो खबरें जो हरदा के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। तो आइए खोलते हैं हरदा जिले की चिट्ठी और पढ़ते हैं बीते दिनों की कहानी, आने वाले कल की जुबानी। बात सबसे पहले मौसम की। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखने की अपील की है। नौतपा के चलते जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कुछ राहत जरूर मिली लेकिन दोपहर बाद गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात ऐसे रहे कि शाम तक सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। वहीं हरदा जिले में जनगणना 2026-27 के पहले चरण का काम आज पूरा हो रहा है। 1 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रगणक घर घर पहुंचकर भवनों का विवरण दर्ज कर रहे हैं, आवास संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर गाँव तक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्द का संदेश दिया। भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्याओं को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ग्रामीण नागरिक हैंडपंप या नल जल योजना बंद होने की शिकायत 07577223212 पर दर्ज करा सकते हैं। इसी कड़ी में हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों को फायर फाइटर पानी टैंकर उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य गर्मी के दौरान पेयजल संकट से राहत पहुंचाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिले में जागरूकता गतिविधियां जारी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों में पोस्टर मेकिंग, रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किशोरियां चुप्पी तोड़ो, खुलकर बात करो का संदेश देकर सामाजिक संकोच दूर करने का प्रयास कर रही हैं। वह डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में ई ऑफिस का बेहतर और प्रभावी उपयोग सिखाया गया। अब एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। वैवाहिक संपत्ति, मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई राज्य, जिला और मध्यस्थता केंद्रों पर की जाएगी। जिले में कुपोषण दूर करने और स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोषण पैरी अभियान और विद्या आसन अभियान को समाज का व्यापक सहयोग मिलने लगा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया है। किसानों के लिए भी एक अहम खबर है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। किसानों का पंजीयन 15 जून तक जारी रहेगा। वहीं खरीदी केंद्रों पर उपज बेचने से पहले किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हरदा पुलिस ने कंट्रोल रूम में विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार, पारिवारिक सामंजस्य और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। और अब एक और सुखद खबर। मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना के तहत हरदा जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आगामी 3 जुलाई को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा राज्य सरकार के खर्च पर कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हरदा जिले की चिट्ठी में आज बस इतना ही। कल सुबह ठीक 10 बजे हम लेकर आएंगे पड़ोसी नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। हरदा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत।

0: चिट्ठी से लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप सबकी अपनी बहन रामकुमारी ठाकुर की राम राम पहुंचे। आप सभी जने बाट हेर रहे हुई अपनी पसंद के चिट्ठी से लोकगीत सुनबे के लाने, तो आपको इंतजार समाप्त करत है और सुनवा रहे हैं रामलखन सेन को गाव भाव जो लोकगीत एको सुनबे। हमें चिट्ठिया लिख भेजी है, व्हाट्सएप पे फरमाइश आई है, कॉन्ट्रैक्ट कॉलोनी रायसेन से, योगेश्वर से भारतीय, भैरव प्रताप से भारतीय, लोकेंद्र प्रताप से, प्रेमबाई, कृष्णा भारतीय, ललिता भारतीय और गोपाल भारतीय ने, रहटी जिला सीहोर से अमर से भारतीय, डॉक्टर सिखावत से भारतीय, सचिन भारतीय, महेंद्र भारतीय और कोसाबाई भारतीय ने, तो सुनते हैं सबकी पसंद पे रामलखन सेन को।
1: के चूल्हे पे बैठी चढ़ाए तवा, ए चूल्हे पे बैठी चढ़ाए तवा, पे मोरे लगे ना घाले घवा, चूल्हे पे बैठी चढ़ाए तवा, मोरे लगे ना घाले घवा।

दिखावे। अरे ज्यो होवे गगरन को आवा, ए ज्यो होवे गगरन को आवा, भैया मोरे लगे ना घाले घवा, चूल्हे पे बैठी चढ़ाए तवा, मोरे लगे

के भैंस लगा लो, अरे मुंह से कावे के भैंस लगा लो, अपनो छाने माल मसालो, अपनो छाने बा माल मसालो, और राम लखन ना पावे रबा, राम लख

घाले घवा है, चूल्हे पे बैठी चढ़ाए तवा, मोरे लगे ना घाले घवा, चूल्हे पे बैठी चढ़ाए तवा, चढ़ाए

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और अब अगलो लोकगीत लेके आए हैं केसो सुलेरी को गांव भाव। एक हो सुन भी हमें चिट्ठिया लिख भेजी है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन, रामदास, सिवा, शिवांशु, यस, अवधेश सक्सेना, प्रेम नारायण, पंडित रमाकांत दुबे और प्रमोद सैनी ने। एक हो सुन भी चिट्ठिया लिख भेजी है बिल्लाई जिला दमोह से मुन्ना कुड़ारी ने। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पे केसव सुरलेरी को।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और अब संदेशों के बाद अगलो लोकगीत लेके आए हैं ललित मोहन को गाओ भाव। एक सुन भी हमें चिट्ठिया लिख भेजी है रामटोरिया तहसील घुआरा जिला छतरपुर से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, पूजा, काजल, आयुषी, अंश, मोहनी, गोलू, नीरज, करिश्मा, रवि, शंकर, विभीषण, भविष्य, नामदेव, कमलेश दीदी और सभी रामटोरिया निवासियों ने एक हो सुन भी हमें चिट्ठिया लिख भेजी है भोपाल रोड बदौना से कन्हैया ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, सोनू ठाकुर, पेहा और बिट्टू ने। तो सुना थे इन सब की पसंद पे ललित मोहन को गाओ भाव लोकगीत।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और अब अगलो लोगी सुनवा रहे हैं कैलाश खरे को गावा। एक और सुन बे हमें चिट्ठिया लिख भेजी है गौर झामर जिला सागर से कुंदनलाल चौरसिया, अंबिका प्रसाद चौरसिया, विवेक कुमार, वीरेंद्र कुमार, देवव्रत, कार्तिक, आराध्य, नैवेद्य, मनोज, मानस और सभी साथी। ग्राम इंडोरिया जिला दमोह से ममता, महेश, हर्ष नामदेव, नंदिनी, सुनीता नामदेव, कीर्ति, क्षमा और इनकी सवाई मित्र मंडली ने एक और सुनबे चिट्ठिया लिख भेजी है धर्मश्री मंगलधाम कॉलोनी सागर से श्याम रैकवार, लक्ष्मी, खुशबू, बंदना।

विराज दक्ष कीर्तिका भूमिका टक्कू विक्रम विनय और बादल रेकवार ने तो सुना थे इन सभी की पसंद पे कैलाश खरे को।

कैलाश खरे के गाए लोकगीत के संगे कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत समाप्त करवे की बेरा हो गई। अपनी बहन को आज्ञा देव राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को दो हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। बहनों, एक सप्ताह तक आप सभी जने इंतजार कर रहे थे कि हमारी बहन आ हैं और कछु ने कछु नई जानकारी नई बातें बताएं। सो बहनों, आज अपन चर्चा कर हैं। आज 30 तारीख हो गई है। आगामी समय में हमारे बच्चों की स्कूलें खुलने वाली हैं।

0: तो स्कूल की करें तैयारी, ये विषय पे अपन बातचीत करें। संगई देखो बहनों, बारिश की बूंदें पड़न लगी हैं और ऐसे में हमें जरूरत पड़त है अपनी रसोई की देखभाल करने की, रसोई के रख रखाव की, ये पे भी अपन चर्चा करें। संगई एक और नए काम की शुरुआत करने हैं, तैयारी करने हैं, वो है अपने आसपास पड़ी भई जमीन में, अपने बारों में, बिड़ियों में अपन को सब्जी भाजी लगाने हैं। तो वो को योजनाबद्ध तरीका से काम करें तो काम अच्छो हुई है और फिर हमें अपने अच्छे काम को देख के प्रसन्नता भी बहुत होती है। तो बहनों लो, सबसे पहले हम आपसे चर्चा कर रहे हैं स्कूल के बारे में। तो देखो बहनों, हर काम हर व्यवस्था समय से बंधी भई है कि नहीं, आप ही बताओ। बिल्कुल समय से बंधी है और आप समय पे तैयारी और योजना बना ले हो तो काम में सफलता मिलवे को प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है। फिर चाहे बा देखो बहनों, किसानी हो बे, पढ़ाई लिखाई हो बे या और कोनो भी काम हो बे, उनको अपन समय पे और योजनाबद्ध तरीका से करें, विचार विमर्श करके करें, पहलों से सारी तैयारी कर लेवे तो काम अच्छो होते है। बहनों देखो, अब बच्चों की छुट्टियां जो है समाप्त होवे बारी है, जहां उनको घूमने हैं तो, जहां उन्हें जाने हैं तो, कछु खेलने हैं तो, कछु सीखने हैं तो, उनको उन्हें सब कछु इतने छुट्टी के समय में कर लो। और अब बारी है उनकी स्कूल खुलवे की, तो अपने बाल बच्चों को रुझान अपन को स्कूल की तरफे माने पढ़ाई की तरफे करवे को समय है कि बेटा अबे अपन ने खूब मस्ती करी, मामा के घूमे, बुआ के घूमे, सब जगह घूमे और अब अपन को पढ़ाई की तरफ पे ध्यान रहने। एक इलाने अपन को चाहिए कि अपन उनके स्कूल की बात करें, उनसे पूछें कि बेटा तुम्हारे स्कूल बैग में देखो, चेक करो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी चीज़ों की आवश्यकता ज़रूरत है तो बताओ, हम मंगवा दें। आपकी ड्रेस देखो, कछु कमी तो नहीं है, बढ़िया है, पुरानी तो नहीं हो गई या कछु बदलवे की आवश्यकता है। ऐसी उनकी तैयारी की बातें जब अपन अपने बच्चों से कर भी तो उनको रुझान, उनको इंटरेस्ट ओ तरफ बढ़े और वे स्कूल की तैयारी में जुट जाएं, उनको मन स्कूल की तरफ उतर की तैयारी की तरफ जाए। कितने समय स्कूल जाने, उकेलाने कितने समय उठने हैं, ऐसे विचार उनके मन में अपन को डालने हैं और बच्चा के मन में आए भी, संग में उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी अपन को यही सब चीज़ों के संगे ध्यान देने का हो, तभी वे स्वस्थ और खुश मन से स्कूल की अच्छी मन लगा के तैयारी करें और आगे आवे वाले समय में उत्सुकता से वे स्कूल जाएं। और फिर जब उत्सुकता से स्कूल जाएं तो वे अच्छी मन लगा के पढ़ाई करें। एक ही संगे बहनों, एक बात और अपने बच्चों से करना है कि आपको छुट्टियां होबे से पहले आपके शिक्षक ने, आपके टीचर ने कछु होमवर्क दा हुई है, कछु घर को काम दा हुई है कि जो आप छुट्टियों में आपको इतनो पूरो करने हैं तो वो भी कहा हमारे बच्चों ने पूरो कर लो, ये पे भी अपन को ध्यान देने हैं, उनसे बात करने हैं और अगर नहीं करो आए बेटा तो अबे पूरो कर लो और स्कूल की तैयारी में जुट जाओ, ऐसी मानसिकता अपन को अपने छोटे बाल बच्चों की बनाने हैं। और फिर पढ़ाई के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार भी अपन उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो बहनों जातो भती बात स्कूल की तैयारी की और अब सुने संदेश।
1: इस रविवार सुबह 8:30 बजे सुनिए स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित बाल सभा।
0: और बहनों अब भारी है आपके मनोरंजन की, तो सुनत है रज्जू राजा चौहान का कह रही है।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और बहनों, अब लोकगीत के बाद अब अपन बात करें अपनी रसोई की। बहनों, गर्मी जा नहीं पावे और बारिश की फुहारें पड़न लगत हैं। फुहार पड़ते ही से खावे पीवे वाली चीजें नमी पकड़न लगत हैं और जरई अगर न देख पावे तो खराब भी हो जाते हैं। सो बहनों, कहबो हम जा चाहते हैं कि बारिश के आवे से पहले जौन भी अपनी खाद्य सामग्री है उको हल्की धूप दिखा के डिब्बों के ढक्कन पनी या कागज फंसा के लगाने हैं, जिमें नमी या ठंडी हवा उनमें प्रवेश न कर पावे। ऐसो करवे से बहनों पूरे साल आपकी सामग्री, चाहे वे मसाले होवे या अन्य कोनो सामग्री, खराब होवे की संभावना रहते ही नहीं है। अपनो सामान बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। फंगस, वायरस या सड़वे गलवे की कोनो समस्या नहीं रहे, संगई पौष्टिकता भी बनी रहे थे। एके संगे रसोई की सफाई भी अपन को बराबर ऊपर से नीचे तक करने कहाई। ऊपर से जाले कचरा है, सबकी सफाई अच्छे से कर लो चाहिए। धूल मिट्टी कहूं भी जमीने रहे, कैसे के नमी पकड़ते ही से फंगस वायरस पनपन लगत है, जो उनके बीमारियां फैलवे में, वातावरण को प्रदूषित करवे में सहायक रहते हैं। कैसे बहनों, देखो कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य की कुंजी है और अस्वच्छता गंदगी बीमारियों की जड़ है। तो आप ही समझो बहनों कि अपन को का करो चाहिए और का नहीं करो चाहिए। बहनों, रसोई की सफाई के संगे पूरी की पूरी खाद्य सामग्री, सभी प्रकार के मसाले डाले हैं, जो भी खाद्य सामग्री है सभी कछु सुरक्षित तरीका से रख के सामग्री को खराब होवे से बचाव चाहिए, संगे नुकसान से भी बचे और संग में स्वास्थ्य लाभ भी लेवे। तो बहनों, जा तो चर्चा थी अपनी रसोई के बारे में और हमारी बहनें बहुत समझदार हैं, सब बातें जाना थे, मनो हम तो खबर करा दी थे कि ध्यान दिला दें, आपको ध्यान उतर पे केंद्रित कर दें तो आप जाके आज ही से अपनी रसोई की सफाई करने लगो। और बहनों, अब बारी है मनोरंजन की, तो सुनते अपन संतोष से परमार का कह रहे हैं।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और बहनों, अब बात है

अपन सभी जनों को जैविक सब्जी लगावे की। तो अपने जोन बारे बेड़िए हैं जहाँ जगह खाली पड़ी है उते अपन को जा तैयारी करने है। तो अपने घरों के आसपास पेड़ पौधा अगर लगे हुए बहनों तो बहुत ही उम्दा रहत है। सो अबे समय है ओकी तैयारी करके रोपण करवे की। कैसे जब तक बीज अंकुरित होके बड़ो हुई है सो बारिश की बूंदे पड़न लगे, पौधा बड़ो होके फलन दे है। सो बहनों आपके आसपास जहां भी अपन को जौन प्रकार के पौधा लगावे की जगह उचित लगे या जहां आप पहले से लगाउत हो उते पौधों के हिसाब से गड्ढा करके माटी को भुरभुरी कर लेने हैं। माटी में खाद उर्वरक डाल के गड्ढा जो है भी तैयार कर लेने हैं और उनमें अच्छो प्रमाणित बीज या पौधा जो भी आप लगा रहे हैं बुआई अपन को कर देने हैं, लगा लेने हैं। थाला बना के फट्टा पे भी अपन पौध तैयार कर सकते हैं। जो उन चीजों की आपको टमाटर, भटा, मिर्ची, गेंदा या और भी जो फूल हैं उनकी अगर पौध तैयार करने हैं तो वह भी अपन थाला बना के फट्टा पे ओपे अपन पौध तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही पौध थोड़ी बड़ी होते 15 दिन की और बारिश शुरू हो जाए वैसे ही अपन ओको रोपण जहाँ लगाने हैं उते कर दें और वो जगह को अच्छी भुरभुरी भी कर लेने हैं। कम से कम 1-1.5 फुट गहराई में गोबर की पची भई खाद अपन को मिलाने हैं। आपके हो बहनों इसे का हुई तो आप खुद देखत हो जहां अपन गोबर की खाद को उपयोग करते हैं उते के फल, उते को फलन, फूल सब कछु अच्छे होते हैं और स्वस्थ दिखत हैं। ऐसी जगहों पे अपन लौकी, कद्दू, करेला, ककड़ी, गिलकी, बरबटी और भी जो आप पसंद करत हो वो लगा सकत हो। एक ही संगे टमाटर, भटा, भिंडी, धनिया, पालक, मेथी एक ही व्यवस्था भी अपन थोड़ी थोड़ी जगह में कर सकत है और अपनी जगह के अनुसार अपन को जी व्यवस्थाएं करने हैं। यही समय फूलों की क्यारियां भी हम तैयार कर सकते हैं। अगर हम फूलों की क्यारियां तैयार कर ले हैं और सब्जी भी लगी रहे तो हमारी जो बगिया है बहुत ही प्यारी और सुंदर लग है। सुबहनों आप और समय रहत भाई इन सब चीजों की आप अपनी सुविधा और व्यवस्था के अनुसार जैसी आपको सुविधा है, जैसी आपकी व्यवस्था है, जहां आपको जितनी जगह जोन पेड़ के हिसाब से दिखाए उते अपन को उसी तैयारी कर लेने हैं और फिर रोज जैविक ताजी सब्जी को उपयोग अपन करके पैसों की बचत भी करें, अपने मन मुताबिक सब्जी तोड़ के तुरंत ताजी बने हैं और संग में अपन को जब हम जैविक और स्वस्थ ताजी सब्जी खाएं तो हमारे लाने स्वास्थ्य को लाभ तो मिल है तो और हम स्वस्थ भी रहें। तो स्वस्थ और तंदुरुस्त मन के लाने बहनों मनोरंजन भी जरूरी है। तो हम सुनवा रहे हैं कैलाश खरे को गाँव भाव जो लोकगीत।

कैलास खरे की गाय ए लोकगीत के संगे बहनों हम जाय कहें कि बच्चों को करवाओ स्कूल की तैयारी, आप करो रसोई की तैयारी और बारे बीड़ियों में करो सब्जी लगावे की तैयारी, कर लो अच्छे भोजन और स्वास्थ्य की तैयारी। ए के संगे अपनी बहन को आज्ञा दो, कार्यक्रम समाप्त करवेगी। राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खयाम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं बीईएसटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीईएसटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी,
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है। तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या बड़े जानवर वगैरह, इनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते
3: हैं उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे। आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
2: में, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता
3: है, इवन सिटी में भी,
2: सिटी में
3: जो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर
2: कुतर जाते हैं काट
3: का, तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मारी डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
2: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
3: बाकी
2: कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप बीएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू। तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
3: तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं।
2: ओ,
3: रसायन,
2: 7000
3: रसायन। जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है
2: जी,
3: ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से टीबी शरीर की बीमारियां होती है, और सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर, पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज जो कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया,
2: और मुक्त बेस्ट,
3: अच्छा, और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए
2: जी जी।
3: तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
2: वाह।
3: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे।
2: अच्छा।
3: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तम्बाकू के ऊपर तो सामने 816 रुपए का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। वो जो भार है मेनली तम्बाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया, और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
2: जी,
3: जो डेथ वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए, तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तम्बाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार कम पड़ रहे हैं तो ये नोटिफाई किया गया, और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नॉलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
2: क्या बात है।
3: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
2: चलाए जाए
3: जो लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिव।

0: बड़ी बड़े
1: निश्चित
0: हमारी
1: रूप से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसी होती है और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
0: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है
1: जी,
0: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
1: अच्छा
0: कलीग खा रहे हैं, ले लेना,
1: अच्छा
0: ले लेना, तो छोटी छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
1: जी,
0: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
1: जी,
0: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वो केमिकल का नाम है डोपामिन।
1: ओके।
0: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं
1: जी,
0: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस भी फील करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको।
1: ओह।
0: और किक के वजह से लोग, ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स, ये किक के वजह से एक तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है,
1: अच्छा।
0: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है, तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है,
1: अच्छा।
0: उसको कहते हैं कि निकोटीन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स, वो जो है वो रजिस्टर हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
1: यानी पहले एक ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी, वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती है।
0: आगे
1: वो मात्रा बढ़ती जाती
0: है, बढ़ते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरे डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, देन वो बीमारियां शुरू होती है।
1: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है।
0: यस, बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर, कैंसर ठीक है, होता है, 100% होता है वो, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और कोई नोटिस नहीं करता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस, उसके भी जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पाचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है, और उसके वजह से लोग उनको अपाचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब एक अपाचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स या कैल्शियम, मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है, देखा गया है कि जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
0: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है, तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और ऐसे
1: लोग डेंसिटी कम हो जाती है,
0: बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरक्षक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं
1: जी,
0: वो कम हो जाती है, और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते हैं। तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
1: जी।
0: और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट, ये कैंसर की बीमारी
1: जी जी।
0: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में
1: जी
0: तंबाकू की वजह से होने वाले
1: कैंसर के,
0: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
1: ओहो।
0: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है, तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत दर्दनाक
0: चीज है,
1: मगर सत्य है।
0: लेकिन ये सत्य है
1: जी,
0: और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ।
1: हाँ।
0: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है।
1: जी जी जी, हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
0: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
1: जी जी,
0: कि पहला तो हम समझ लेते कि

0: पूरी दुनिया भर में
1: हाँ,
0: दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है
1: हाँ,
0: वो है एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
1: अच्छा,
0: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
1: ओ, अच्छा।
0: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है
1: हाँ,
0: कि तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखे तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं। पहले दो साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारा जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन
1: जी,
0: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के फंक्शन को ये तंबाकू ऑल्टर करता है।
1: अच्छा,
0: और बहुत सारे रीजंस है, और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
1: अच्छा।
0: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो उसके जो पांच प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन।
1: अच्छा,
0: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
1: मतलब जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
1: इसकी रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है।
0: यस, हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
1: जी जी जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे।
0: yes,
1: मगर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
0: yes,
1: तो हमें दोनों बातें बताइए।
0: yeah,
1: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं?
0: yes,
1: कैसे
0: yes,
1: होते हैं?
0: yes,
1: और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले?
0: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जब तंबाकू अगर सपोज वो सेरे हर एक घंटे में खाता है
1: जी,
0: या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है।
1: अच्छा,
0: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है।
1: अच्छा,
0: वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए,
1: बेशक
0: हृदय की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। तो वो नॉर्मल रहने लगती है, देन उसके बाद ब्लड प्रेशर जो, इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है ज्यादा ही दिखाने वाला है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह,
0: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता हो तो छोटा का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
1: कम हो जाती है। जी जी जी,
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं। देन आगे जाके छोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी रिस्क कम हो जाती है। देन डायबिटीज में हमारे पास लोग है जिन्हें तंबाकू छोड़ दी है उनकी डायबिटीज की गोले भी बन हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अभी उसकी।
1: अच्छा,
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है कि तंबाकू की लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई है।
1: क्या बात,
0: तो ये सब उसके फायदे है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे है छोड़ने के बाद। तब यस, ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन, और निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा,
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूं तो कल चार बार खाऊंगा, तीन तीन, तो ऐसा कभी नहीं होता, उसको झटके से ही छोड़ना है।
1: अच्छा,
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रॉल सिम्टम 100% महसूस होगा,
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है,
0: वो महसूस होगा ही।
1: हाँ,
0: वो जो विड्रॉल सिम्टम जैसे कि वो वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, पर्टिकुलर डाइवर कंडर को ये बहुत होता था हमारे पास। तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रॉल सिम्टम रहता है।
1: अच्छा,
0: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को एडजस्ट करने लगती है।
1: जी जी जी,
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ जाता है
0: बस,
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: था वैसा।
1: वाह,
0: बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता नहीं।
1: कितनी जरूरी बात है।
0: यस,
1: हमारे श्रोताओं को, उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है,
1: झटके से एक साथ, और उसके बाद
0: दो

0: दो हफ्ते सुनाई नहीं, दो हफ्ते ज्यादा से ज्यादा, दो हफ्ते
1: ज्यादा से ज्यादा, दो
0: ये लक्षण रहेंगे
1: बस, विड्रॉल सिम्टम,
0: विड्रॉल सिम्टम, और उसके बाद वो सामान्य
1: सामान्य हो जाएगा, अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
0: वाह वाह, तो फायदे हमने जान लिए। हम तम्बाकू

0: टोबैको प्रोडक्ट एक्ट,
1: अच्छा कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोटपा एक्ट,
0: कोटपा एक्ट, अच्छा उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ पनिशेबल ऑफेंस।
1: जी जी।
0: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
1: जी
0: जो होती है वो भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते है वो न खाए और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग। उसका फायदा हुआ है, कम हुई है, जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को, और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी ऐड बोलते हैं, अच्छा। उसको भी बैन किया है कि कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले जी, उसको जी। खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहता
1: होता तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते हैं,
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट अलग कर देते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तब जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह के लिए यूज होता था, अभी वो तंबाकू के वजह नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग अच्छा, खाते पीते उसके लिए, तो सरोगो एड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
1: जी, जी।
0: तो ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसके वजह से जो बीमारी है कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
0: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, इन्हेलेशन आ गया है।
1: हाँ
0: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन तरीका ई सिगरेट आ गई है, उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है।
1: जी जी,
0: उसमें हानिकारक।
1: तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी उतना ही धोखा, उतना ही रिस्क। जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया तो तुरंत उल्टियां होने लगती।
0: यस यस यस। और बहुत बार तो जैसे
1: लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता,
0: उनको नहीं होता। ये जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको। अगर हस्बैंड स्मोक करता है
1: जी जी,
0: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है
1: हाँ,
0: तो उसमें भी धुआं जाता है ना।
1: बिल्कुल हाँ,
0: वो धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पैसिव स्मोकिंग के वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है
1: जी,
0: जो अभी तक दुनिया में आया नहीं है उसको भी खतरा है,
1: तो उस पर भी असर हो रहा है,
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको तो
1: जी।
0: द पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको
1: हाँ।
0: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
1: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है?
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
1: अच्छा,
0: आई डोंट थिंक सो।
1: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे।
0: नहीं, ये सब मिथ्स है, मिथ्स।
1: अच्छा,
0: है, मिथ्स है,
1: ऐसा कुछ।
0: सी, तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी।
1: बस वो
0: बस उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके। बस
1: हाँ,
0: बस
1: हाँ,
0: जैसे मैं शुरुआत में बताया, छोटा जीव है तो जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा।
1: मरेगा जरूर,
0: मरेगा जरूर।
1: तो इस कठोर सत्य को, इस कटु सत्य को जो हमें जान लेना
0: है, एक्सेप्ट करना है, हमें
1: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है?
0: यस, उसको हमने,
1: ये कैसे हुआ?
0: यस,
1: कब हुआ?
0: या,
1: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
0: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स।
1: अच्छा,
0: या मैजिक चूरन,
1: जादुई चूरन,
0: जादुई चूरन। जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोग में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
1: अच्छा,
0: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरन मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोले हैं जो महाराष्ट्र में
1: हाँ,
0: तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया।
1: अच्छा,
0: तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते
1: हाँ,
0: हमने चूरण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोप और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे
1: हाँ,
0: तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा।
1: अच्छा,
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें।
1: अच्छा,
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घिसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू को घिस रहे हो।
1: जो लोग तंबाकू मल के खाते
0: हैं तो उसको कलर भी वैसे ही है उसका
1: हाँ, हाँ।
0: ना उसमें साइंस ऐसा है कि जो दालचीनी है

0: इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटिन के विड्रोल को और कम करती है।
1: अरे वाह,
0: तो साइंस भी है उसके पीछे।
1: क्या बात है।
0: तो इसके वजह से हमने चूर्ण बनाया, उसका नाम रखा है मैजिक मिक्स।
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स,
1: वाह वाह वाह।
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है।
1: हाँ।
0: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह।
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
1: अच्छा।
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ।
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
1: अच्छा।
0: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे।
1: हाँ।
0: तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
0: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
0: सबके फायदे के लिए। हमने खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
1: अच्छा। हाँ,
0: तो आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
0: खुद बनाइए घर पर, खाइए।
1: तो ये फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
0: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है।
1: हाँ।
0: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है, क्योंकि वो निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
1: बिल्कुल,
0: सब ये अपने गर्म मसाले फायदेकारक ही है अपने बॉडी को,
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
0: यस,
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
0: दालचीनी,
1: दालचीनी,
0: अजवाइन,
1: अजवाइन,
0: जीरा,
1: जीरा,
0: बड़ी सौंफ,
1: सौंफ,
0: सौंफ, और एक आध लौंग।
1: अच्छा,
0: उसको मिक्स करके।
1: लौंग तो एक ही ले
0: एक
1: रहे
0: लेना,
1: बाकी जितनी
0: बाकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल वन।
1: अच्छा।
0: उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में। मिक्सचर होगा वो तंबाकू सरीका लगेगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन उसमें तंबाकू नहीं है। चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का, वो भी चावल का आटा।
1: अच्छा।
0: तो ये आप करके उसको सेम कनिस्टर में,
1: जिसे तंबाकू मलने की आदत है,
0: वैसे ही मल के खाओ,
1: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करो,
0: एक्शन कंप्लीट,
1: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
0: या दबा लो,
1: उसका जो जूस निकलेगा
0: वो
1: आपके शरीर के लिए
0: फायदेकारक है।
1: वाह,
0: उसको थूकना भी नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी जी, जी।
0: वो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इंप्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था।
0: हाँ।
1: और वो कृषि बैकग्राउंड से था।
0: हाँ।
1: उसके घर वाले जो है खेती करते थे। हाँ। तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से।
0: हाँ।
1: और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा।
0: हाँ।
1: ये कितना बड़ा मिथ है, आप जरा
0: मिथ, वो गलत मिथ ही है, सब मिथ ही है,
1: बड़ी गलत,
0: बहुत गलतफहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है वो। जैसे हमने देखे है, आप किसी को अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए बस, खाली समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी जी।
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीड से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए
1: जी,
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कोई भी फॉर्म,
1: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर नसवार
0: नसवाली
1: है,
0: स्मोकिंग है,
1: या स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार का
1: तंबाकू, से
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बातें आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य, उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूँगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे VEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग, इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजीन की आवाजों में, समीर के बोल, संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओ माई गॉड, इस फिल्म का गाना है, कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून

0: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं, ये सोचते हुए कि ऐ दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूं अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आ पासा। तो उसने कहा आला बर्फी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा, इश्के दी चाशनी का बोलबाला रहेगा। इसके बाद मन सोचने लगा हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो, हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफर में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं, हमारा तो दिन सुबह से

हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप, कभी छांव, कभी तेज हवा, हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा। ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की, उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में, या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है, उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो, या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो। इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल सके, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते की बात होती है, तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि आलू के पकोड़े खा लिए जाए, या आलू से बनी हुई ऐसे ही किसी नाश्ते की हमें याद आ जाती है। वैसे सबकी पसंद जो है वो अपनी अपनी अलग होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम थोड़ी आलू की बातें करेंगे, और इसके अलावा कुछ और भी गीत हम सुनेंगे। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना है।

0: उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीज़ों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हों, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मज़ा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत।
1: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहा

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए, वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं, ये एक एहसास है, ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब सहयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज्यादा आता है, कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज पर आ गया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, जरूर वहाँ के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूंगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मज़ा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है, अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है, एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं, और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है, संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में

जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया। बरसात के दिनों के लिए आलू का सूख होता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार। आलू को चालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग। जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज़्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पतिदेव को बहुत पसंद है मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में जिसमें आग तपती उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है, और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है, सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है, मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज़ होती है और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज़ है, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे, फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया, विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है ये। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है, जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद, पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज़ है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी या कुछ चीज़ बना के ले वो आलू की होती है। आलू की सब्ज़ी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीज़ें हम बना करके ले जाते हैं। या यहाँ तक कि हम जब सफ़र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्ज़ी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने और आज तक आलू बैंगन की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गर्म गर्म बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गुथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उसे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो, जैसे बर्फ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है। या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फ़ी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फ़ी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज़ किसकी है आप

मोहित चौहान की आवाज में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्योहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है। आलू समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था। आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज़्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मज़ा हमें तो नहीं आता है। हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हों। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है। पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीज़ें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना लोफर फिल्म का गीत शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने सुना दो रास्ते फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत पर
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध एक हफ्ते में दूर कर लिया गया है।
2: G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। वॉर टावर से लेकर, कनेक्टिंग रोड से लेकर, पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी और 2 साल में हमारा एक वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकभवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। CM डॉक्टर यादव आज शाम को भोपाल वापस आ जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस बार रक्षा अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी ये डिग्री प्रदान की गई है। छतरपुर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जिला प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र सिंह और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश देवालिया आज साइकिल से अदालत पहुंचे। न्यायाधीश ने बताया कि अब प्रत्येक शनिवार सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल से ही न्यायालय आएंगे ताकि आमजन को ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा करना दरअसल पर्यावरण के लिए अनुकूल है और हम अपने देश हित के लिए भी काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और

0: वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण 2023-24 में संचालित किया था। और अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश का आधा हिस्सा जहां भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं बाकी आधे हिस्से में तेज आंधी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड और मंदसौर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में लू की भी चेतावनी है। हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जैसे शहरों के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शिक्षा पुंज पॉइंट 2 नवाचार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर अक्षर साथी घर घर जाकर ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शाला से जोड़ रहे हैं। आगरमालवा जिले में महावारी स्वच्छता दिवस पर ग्राम खेरिया और कानड़ स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। किशोरियों को इस दौरान स्वच्छता, एनीमिया से बचाव और पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। भोपाल जनजातीय संग्रहालय में कल संभावना कार्यक्रम होगा। इसमें राजगढ़ का मालवी गायन, नर्मदापुरम का कबीर गायन और डिंडोरी का गुदुम बाजा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। और रतलाम जिले में गुलाब चक्कर पर साहित्यिक संगम कविताई शब्दों की शान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नए रचनाकारों ने देशभक्ति, मातृप्रेम और नारी शक्ति पर मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुने 7:10 पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने

0: उन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो ज़िगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ओ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो

0: परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया, जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

0: अभी प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: तुम।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग। इस फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम कर

0: मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
1: ओह, डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
3: कभी तबीयत कैसी है?
1: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
1: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
1: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
1: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
1: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
1: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
4: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
1: कहाँ गई थी तुम?
4: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
1: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मेरी पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
1: हम दोनों के लिए।
4: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
1: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
1: अच्छा,
4: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
1: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
4: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
1: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
4: अच्छा जी, तब तो एक काम करें। इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, डेज़ी, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम।

0: पसीना आ रहा है।
1: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गदी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
0: नहीं नहीं, नहीं मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूं।
1: ठीक जी।
0: बेनी, एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
1: बताऊं? दोनों।
0: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
1: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: कलाकार भी हैं?
1: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
0: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
1: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ मैं लॉरेंस हूँ।
1: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
1: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
2: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
1: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खासतौर पर इस हालत में।
2: Exactly.
1: गजब की यादाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते। नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
0: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
2: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ।
1: दिल की तरफ भी पेन है।
2: वैसे
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
0: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते हैं इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
0: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
0: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
1: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: बाय।
0: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
0: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम?
0: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
0: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
0: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: जरा आहिस्ता बोलो।
0: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
0: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
1: तुम ऐसा सोचती हो?
0: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
1: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
0: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। हा? इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
0: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
1: क्या?
0: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
1: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
0: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक चेहरा थे। चेहरा?
1: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
0: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
1: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
0: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
1: देखो मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
0: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
1: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
3: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। दो तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
0: मुझे कुछ नहीं कहना है।
1: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
0: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
1: तो मैं सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझाकर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो यह मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
0: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
1: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
0: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
1: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
0: अच्छा।
1: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
0: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
1: कितने रुपए खर्च हुए?
0: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
1: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
0: क्या?
1: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
0: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
1: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
3: गिरिजा चली गई लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
4: वो बेनी कहाँ है?
3: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
4: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
3: कोई खास बात? बताइए ना डॉक्टर।
4: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं।

0: इन्हीं को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
1: अरे भाई अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
0: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
1: इजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
0: नहीं, मुझे ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
1: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। लो बेनी आ रहे हैं।
2: आइए आइए, कहाँ जा?
3: ओ डॉक्टर,
2: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता।
3: इस पैकेट में क्या है? बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
2: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
3: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
2: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
3: लॉरेंस ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
2: और हाँ बेनी एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
4: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
3: तुम्हारे लिए एक चीज है।
4: अच्छा देखो तो।
3: लो देख लो।
4: साड़ी, ये अब काहे को? और यहाँ
3: मेरी ओर से प्रेजेंट।
4: प्रेजेंट?
3: हाँ तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
4: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
3: हाँ ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर साड़ी पसंद आई?
4: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
3: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़े ना समझ हो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं रो मत, देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो रूठ जाओ। नहीं नहीं ना, अच्छा तो फिर हंस दो, देखो ये ऐसे ऐसे।
4: क्या क्या हुआ आपको? ले जाइए, ले जाइए। बेनी बेनी बेनी डॉक्टर डॉक्टर! कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गए।
5: ओह नो,
4: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
5: आखिर ये हुआ कैसे?
4: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा।

0: सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांव बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे, मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
1: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
2: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
1: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
2: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
1: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो, देखो इससे बेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
2: गिरजा
1: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
3: अच्छा?
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
7: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
5: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
7: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
5: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
8: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
9: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे,
3: कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
8: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरो गुनगा हमको, कोई इसकी दवा जदी हो तो कहो।
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है। अच्छा श्रोताओं, चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ, वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है

0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसी मस्ती करती हूँ, घर में भी हाँ। बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विर्ष खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं। और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
0: जी,
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री? आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
1: हाँ।
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
0: अच्छा।
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी,
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को।
0: हाँ।
1: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए।
0: आह, क्या है ना।
1: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
0: उतनी बुलंद आवाज।
1: हाँ, बुलंद आवाज थी
0: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा,
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत तो दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा में, हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं

0: बंध जाती किसी भी चीज में।
1: अच्छा,
0: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
1: हाँ।
0: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता। पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
1: अच्छा।
0: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
1: हाँ।
0: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
1: जी,
0: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
0: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, और जो चीज़ है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके। तो मुझे नहीं लगता कि वो, पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ,
1: एक
0: तो
1: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना।
1: हाँ।
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी,
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव, कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
1: जी।
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
1: हाँ, जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ,
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
0: और बहुत मीठा संगीत है,
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल ने

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी
0: जी।
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
0: हाँ,
1: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी।
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
0: जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में
0: जी, जी।
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वेंट्स में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।

0: अच्छा, बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं, या अभी कुछ सीन हो रहा है तो उसके बाद मेरा है, तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
1: अनुसार लड़कियों से गिरी रहती थी,
0: तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
1: जी।
0: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
1: हाँ। नहीं, वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
0: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
1: जी,
0: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
1: जी,
0: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
1: जी,
0: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
1: नीचे का जी।
0: लेकिन वो ले गए
1: जी,
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
1: वही
0: तो
1: सेम फिल्म,
0: हाँ सेम फिल्म, लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी। जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी,
0: से
1: जी।
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
1: हाँ जी जी उसके बाद ही,
0: हाँ तो मस्ती में की बस। और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
1: जी, जी।
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी
1: जी, जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: है,
0: देखे अच्छी
1: हाँ।
0: तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
1: हाँ।
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी,
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा,
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके, दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ, तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा,
0: हाँ क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो वो आए पैर वैर छुए बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़

0: लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
1: पति का नाम राजकुमार
0: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
1: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
0: अच्छा, हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
1: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। तो ये बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है। तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम। हाँ। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने जी। तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
0: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
1: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
0: हाँ।
1: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
0: अच्छा,
1: फिर
0: मेरी वही लड़की हीरोइन चाहिए। हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी।
1: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
0: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
1: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म में उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा

0: जैसन पावन प्रीतिया हमार।
1: अच्छा,
0: तो उसमें मैंने काम किया
1: जी,
0: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको।
1: इतना लाइक तो नहीं लिया होगा।
0: बहुत अच्छी फिल्म बनी
1: जी,
0: लेकिन
1: जी, बहुत प्यारी है।
0: हाँ, वो
1: बहुत अच्छी फिल्म। हाँ। जी, एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती। ये जो भाषा का बदलाव है, इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
0: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
1: अच्छा।
0: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
1: मतलब वो चाट और लस्सी खाते
0: पीते। हाँ। जी, क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
1: अच्छा।
0: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
1: सरदार खड़े हैं और
0: तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
1: अच्छा।
0: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
1: जी,
0: हाँ, ये काफी फर्क है
1: जी।
0: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
1: अच्छा,
0: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
0: देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते हैं
1: जी,
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजा रे, चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी
1: जी,
0: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा
1: बहुत,
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा।
0: हाँ।
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते?
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत है,
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था। और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
1: जी,
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं, तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था। और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने,
1: 30 गाने में, और सुना रही थी पसंद है नहीं है अच्छा, और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे। अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है साधना, तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख देते थे
1: एक सेकेंड में।
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार,
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया। तो उनसे,
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती, मैं तुमसे गवाता।
0: ये रविंद्र जी ने,
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैं

0: मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
1: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो?
0: हाँ,
1: आनंद ही अलग आता। हाँ, होगा।
0: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है, क्या बोलना है।
1: अच्छा,
0: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई।
1: हाँ,
0: अल्लड़पन कहते ना,
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन से।
0: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते?
0: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी।
1: हाँ,
0: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी।
1: हाँ,
0: तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: बोल दिया।
0: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
1: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह।
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है। पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर, जिस थिएटर में लगी स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं,
1: क्योंकि मेहनत करो अपनी,
0: अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ,
0: अब देखते हैं क्या होता है।
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ,
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं।
0: हाँ,
1: ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी,
0: हाँ,
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ, हाँ, पर आए हैं।
0: हाँ,
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
0: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी,
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई।

सुनी और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं. बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पी

0: नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और
1: क्या
0: फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम भी
0: मैं
1: सुन
0: एक
1: लें।
0: कोशिश करती हूँ,
1: जी
0: चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ।
1: आह
0: वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
1: जी
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज़ से सीखा है।
1: जी
0: उनका एक गाना गा देती हूँ,
1: जी

पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की, बस एक छांव जुल्फ के, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की, बस एक छांव जुल्फ की,

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
0: जी।
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ये ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को

0: भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए।
1: और बचता कभी नहीं,
0: बचता भी नहीं है, और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं
1: जी।
0: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
1: जी।
0: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि हाँ। आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
1: हाँ।
0: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा। और साड़ियां वीव्स वगैरह, मैं चाहती सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें, तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली
1: जी,
0: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
1: अरे वाह।
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
1: फिल्म है कैसी है पहेली।
0: कैसी है पहेली,
1: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदला जा रहा है। प्रदेश के अनूपपुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। यह दुर्घटना पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के बिजोरा गांव में हुई, जहां करीब 6 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े सामने आए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपाल स्टील इंडिया कंपनी की निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो आज सेमीफाइनल में जापान की सायका होबारा और यऊची शिमोगामी से पराजित हो गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दोस्तों, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। सुख का तो ठीक है, लेकिन दुख में आत्मनिर्भरता ही आपके काम आती है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों से नहीं आती, ये आती है आपके टैलेंट से, आपके अपने कौशल से। आपका ये टैलेंट ही आपको हमेशा सही राह पर लेकर जाता है। कैसे, जानते हैं आज की युवाणी में। आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, अभी मैंने आपसे आत्मनिर्भरता की बात की, ये क्या है और कैसे काम आती है, जानते हैं राहुल और प्रिया की बातों के जरिए। राहुल ने कहा, आजकल हर तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन सच बताऊं, आत्मनिर्भर बनना इतना आसान नहीं है। पहले तो हमें कुछ अच्छा कौशल सीखना पड़ेगा ना। प्रिया ने कहा, बिल्कुल सही कहा। कौशल विकास मतलब बस डिग्री ले लेना नहीं है, मतलब वो हुनर सीखना जो काम आए, जिससे आप पैसे कमा सकें और दूसरों पर निर्भर ना रहें। जैसे आजकल लड़के लड़कियां सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं। राहुल ने कहा, हाँ, मेरे बगल वाले भैया ने तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया था। पहले वो मजदूरी करते थे, अब खुद का छोटा सा काम शुरू कर दिया है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ खुद ही संभाल रहे हैं अब वो। ये है असली आत्मनिर्भरता। प्रिया ने कहा कि हाँ, सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, पीएम कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ITI, पॉलिटेक्निक, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग सिर्फ नाम सुनकर रह जाते हैं, असल में जाना, ट्रेनिंग लेना और फिर लगना भी तो पड़ता है। राहुल ने कहा, कौशल सीखने के बहुत से फायदे हैं। नौकरी की तलाश में भटकना बंद हो जाता है, खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छी कमाई होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और देश भी मजबूत होता है। प्रिया ने कहा, बिल्कुल, एक गांव की लड़की अगर अच्छे से हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग या ऑनलाइन काम सीख ले तो वो न सिर्फ खुद कमा पाएगी बल्कि दूसरी लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे सकती है। एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, फिर पूरा गांव। राहुल ने कहा, लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। सही ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलता, लोग बीच में छोड़ देते हैं, लोगों का ये सोचना कि ये काम तो छोटा काम है और शुरुआत में पैसे भी कम मिलते हैं। प्रिया ने कहा, चुनौतियां तो हैं, लेकिन रुकना नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्स, फ्री एप्स के जरिए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस लगन चाहिए। राहुल ने कहा, वाकई में कौशल विकास आत्मनिर्भरता की सीढ़ी है। जितना ज्यादा हुनर सीखोगे उतना कम दूसरों पर निर्भर रहोगे। चाहे नौकरी करो, अपना काम शुरू करो, आत्मनिर्भर इंसान कभी हार नहीं मानता। प्रिया ने कहा, और सबसे बड़ी बात ये कि आत्मनिर्भर व्यक्ति न सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि परिवार, समाज और देश को भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, राहुल और प्रिया की बातों के जरिए ये तो समझ में आता है कि किताबी ज्ञान अच्छा है, लेकिन हाथ का हुनर जीवन बदल देता है। तो आज से ही तय कर लीजिए कि आप एक नया कौशल सीखना शुरू कर देंगे। छोटा कदम हो सकता है, लेकिन ये कदम हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा। कौशल सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए और देश को मजबूत बनाइए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं KK की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों, आज के समय में हमारा युवा समाज नशे की लत का ज्यादा शिकार है। आज युवाओं के नशे का मुख्य कारण है उनमें सहन शक्ति की कमी। देश का युवा वर्ग आज नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। युवा आजकल बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और इस कारण वो भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को भी खो देते हैं, फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं। नशे को किस तरह से छोड़ा जा सकता है, नशे की लत से किस तरह से बाहर आया जा सकता है, जानते हैं आस्था तोमर से।
1: दोस्तों, देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चले तो इसमें नुकसान केवल उन युवा पीढ़ी का ही नहीं होता, बल्कि

0: में देश का भी नुकसान होता है। युवा पीढ़ी के गलत राह पर चले जाने से देश की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि इन्हीं से तो देश की तरक्की है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे के राह पर जा रही है। दोस्तों, एक व्यक्ति जब नशा करना शुरू कर देता है तो उसका घर, परिवार, सबके जीवन में अंधेरा छा जाता है। दुख तो इस बात का है कि यह सब जानने के बावजूद भी युवा पीढ़ी नशे का सेवन करना नहीं छोड़ रही। सारे देशों में भारत सबसे अत्यधिक युवा पीढ़ी वाला देश है। युवा पीढ़ी पर ही देश की तरक्की निर्भर करती है। लेकिन जब युवा पीढ़ी गलत राह पर चली जाए तो फिर देश की तरक्की कैसे हो सकती है? आज नशा इस कदर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है जैसे एक दीमक लकड़ी को बर्बाद कर देती है। नशा नाश के समान होता है और आज भारत की युवा पीढ़ी बहुत तेजी से नशाखोरी की प्रवृत्ति अपना रही है। आजकल लड़कियां भी नशा करने लगी हैं। आजकल के युवाओं में नशा करने के बहुत सारे कारण मौजूद हैं, जैसे कि नशे को फैशन समझना, तनाव को कम करने का माध्यम बनाना, गलत संगत में फंसना, संस्कारों की कमी और नशीले पदार्थों का अत्यधिक प्रचार और प्रसार। यदि आज के युवा वर्ग को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाना है, उन्हें नशे की राह पर जाने से रोकना है, तो नशीले पदार्थों की बिक्री पर कठोरता से रोक लगानी पड़ेगी। जब नशीले पदार्थ की बिक्री नहीं होगी तो लोग उसका सेवन ही नहीं करेंगे। आज सरकार और बहुत सारे ऐसे संस्थान जो युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ युवा पीढ़ी को भी यह समझने की जरूरत है कि वे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बुरे की पहचान भली भांति कर सकते हैं, इसलिए नशीले पदार्थों को अपनी लत ना बनाएं। ये समझने का समय आ गया है कि स्कूल और कॉलेजों में पागलपन भरी प्रतिस्पर्धा युवाओं के भविष्य को सुधारने के बजाय बर्बाद कर रही है। प्रतिस्पर्धा का उच्च स्तर छात्रों को तनाव में डाल रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। माता पिता का ध्यान अपने बच्चों को कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते देखने पर ही नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वह एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे की परवरिश करें जो सही और गलत के बीच का अंतर करने में सक्षम हो। माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए और हर कदम पर उनके साथ रहना चाहिए। उन्हें अपने कौशल को निखारना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी क्षमता को भी समझना चाहिए। उन्हें पढ़ाई और ऐसी अन्य अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए। माता पिता को यह समझने की जरूरत है कि अपने बच्चों को डांटना और उन्हें लत छोड़ने के लिए मजबूर करना मदद नहीं करता है। किसी भी तरह की लत से छुटकारा पाना एक क्रमिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान माता पिता को अपने बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को नशे की लत से उबरने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप आस्था तोमर को सुन पा रहे थे। दोस्तों, माता पिता हमारे साथ हर जगह नहीं होते, इसलिए वो हमें संस्कार देते हैं और उनके ये संस्कार ही हमें जीवन में हर गलत राह पर जाने से रोकते हैं, हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। नशा छोड़ने के लिए जरूरी है कि युवा अपने आप को मजबूत बनाए और गलत संगति से बचे। कोई भी परेशानी अपने माता पिता के साथ या अपने संग साथियों या कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमें समझ सके और जो सही और गलत में फर्क बता सके, उनसे शेयर जरूर करें। जब भारत का युवा वर्ग नशे की लत से दूर रहेगा, तब तो वो अपने करियर के बारे में सोच पाएगा। और आज के समय में करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं, तो उन रास्तों की तरफ देखिए और नशे से दूर रहिए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

और अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे पिथौरा भित्ति चित्र कला के विषय में। पिथौरा भित्ति चित्र कला क्या है? दोस्तों, पिथौरा भित्ति चित्र कला गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की बहुत खूबसूरत और जीवंत कला है। ये मुख्य रूप से राठवा और भील समुदाय के लोग ही बनाते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि पूजा पाठ और अपनी इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का एक पारंपरिक तरीका है। पिथौरा चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं, आमतौर पर घर की मुख्य दीवार या पूजा वाले कमरे की दीवार पर ही बनाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा और काला रंग इस्तेमाल होता है, जो कि प्राकृतिक चीजों से ही बनाए जाते हैं, जैसे चावल का आटा, हल्दी, फूल, पत्तियां, ये सभी। और आजकल बाजार के रंग भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ये बनाया कैसे जाता है, ये जानते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले दीवार को गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फिर कलाकार, जिसे कि लखेरा कहते हैं, वो बांस की पतली छड़ी या ब्रश से बिना किसी नक्शे के सीधे चित्र बनाते हैं। चित्रों में घोड़े, बैल, हाथी, मोर, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, देवी देवता और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। बीच में एक बड़ा चौकोर या आयताकार बॉर्डर बना दिया जाता है, जिसमें मुख्य कहानी छुपी हुई होती है। चारों तरफ सुंदर बॉर्डर और छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। दोस्तों, पिथौरा मुख्य रूप से शुभ अवसरों पर बनाया जाता है, जैसे शादी, किसी बच्चे का जन्म, घर बनना या कोई मनोकामना पूरी होने पर। लोग मानते हैं कि पिथौरा बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। ये आदिवासी संस्कृति का आईना है, जिसमें प्रकृति, पशु पक्षी और देवता सभी एक साथ रहते हैं। आजकल ये कला सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही, कलाकार इसे कैनवास, कपड़े और कागज पर भी बना रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इसे बढ़ावा दे रही हैं, ताकि नई पीढ़ी इसे सीखे और कलाकारों की आय बढ़े। दोस्तों, पिथौरा कला हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितनी सुंदरता छिपी हो सकती है। ये हमारी जड़ों, प्रकृति और आस्था का सुंदर मेल है। तो अगर आप कभी राठवा गांव जाएं, तो इन जीवंत दीवारों को देखना कभी मत भूलिएगा। ये चित्र सिर्फ दीवार नहीं सजाते, बल्कि हमारे दिल को भी छू जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ही टेंशन लेकर के जाया ना करें, क्योंकि आपको हर रोज आपका मूड डिस्टर्ब करने के हजारों बहाने मिलेंगे।

हर वक्त खुद को पॉजिटिव रखें। जब भी आप अच्छा फील ना कर रहे हो तो अपने मूड को बदलने के लिए सॉन्ग सुने। इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं ये गीत सुजैन की आवाज में।

दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुलकर जीना चाहिए। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी की आवाज में

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जफर गोरखपुरी का ये कलाम जगजीत सिंह के स्वर में।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं गुलाम अली के स्वर में मोहसिन नकवी का ये कलाम।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम आकाशवाणी सागर से आपको सुनवा रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पयम सैदी की ये गजल, अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के स्वर में।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: और आइए संगीत सरिता कार्यक्रम में अब सुनते हैं चंदन दास के स्वर में ये गजल।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है, 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग और ये है मुल्क फिल्म की कव्वाली शफकत अमानत अली और साथियों की आवाजों में शकील आजमी के बोल अनुराग साइकिया का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो

सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।

0: तराने नए पुराने
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अब आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.6 MHz पर 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत।

जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

सदाबहार गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार के स्वर में अमित खन्ना का लिखा हुआ ये गीत। इस गीत को स्वरबद्ध किया है बापी लहरी ने और फिल्म का नाम दिल से मिले दिल

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
2: आकाशवाणी सागर से सदाबहार गीत कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं आशु भोंसले और किशोर कुमार के स्वर में। अगला गीत दीवार फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और संगीत से सवारा RD वर्मन ने

दीवार फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार गीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 6:45 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं लोक।

0: बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: आइए अब आपको एक युगल गीत सुनवाते हैं देशराज पटेरिया और उर्मिला पांडे के स्वर में।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: लोकरंग कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए राम नारायण गंगेले, देशराज पटेरिया, उर्मिला पांडे और रमेश बाबू सोनी के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 7:00 को है अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले

0: अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले हमारी कल की सभा के मुख्य आकर्षण। कल की सभा सुबह 6:05 पर आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह 6:30 से आपको सुनवाएंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। कुछ फूले बिसरे गीत लेकर आएंगे 6:40 पर और सुबह हमारा दैनिक वैचारिक क्रम होगा 7:00। कृषि चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कृषि संकेत सुनेगा 7:05 से। साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा सुबह 7:20 से और का संकलन और निर्माण करता है मासूम आलम। संयोजन और प्रस्तुति होगी दीपक निषादगी। समय पुनः सुन लीजिए 7:20। संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी संगीत आपको सुनाएंगे 7:50 से। लोक संगीत कार्यक्रम होगा सुबह 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बाल सभा। 9:00 से हम रिले करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 10:05 पर स्टूडियो लौटेंगे और सुनवाएंगे आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगे सुने। 11:00 से आप सुनेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता से मन की बात। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय होगा सुबह 11:00 और 11:30 से दिल्ली केंद्र से ही हम रिले करेंगे मन की बात के संस्कृत संस्करण का प्रसारण। समय पुनः सुन लीजिए 11:00 और 11:30 से।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। दोपहर 2:00 फिल्म संगीत आप सुनेंगे और शाम 5:02 पर होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम रिले करते हैं। शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनेगा 5:40 से। सदाबहार गीत कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से ही आपको सुनवाएंगे 6:30 पर और कल शाम की सभा में लोकरंग कार्यक्रम का प्रसारण होगा 6:45 पर और 7:20 से। और 7:30 से हम ग्राम सभा रिले करेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। रात्रि 8:00 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 से आप सुनेंगे डगर विकास की कार्यक्रम। कल का विषय होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। ये कार्यक्रम योगदान होगा आकाशवाणी छतरपुर का। समय पुनः सुन लीजिए 8:15। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम रिले करेंगे। चित्रपट संगीत होगा 8:30 से और मन चाहे गीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:00 से। और अब सुन लीजिए आज के शेष आकर्षण। अब से बस कुछ ही पलों में यानी 7:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी लेकर आएंगे 7:20 पर। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 8:00 से और 8:20 पर संगीत सरिता कार्यक्रम होगा। 9:00 मन चाहे गीत कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। 9:30 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम विवरण आपने सुना आकाशवाणी सागर से। 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना, और मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ये बातें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही।
1: खेत बचाओ अभियान में गांव गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक सेंसर का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे KVK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे, मैकेनाइजेशन के यंत्र बटना है तो उसमें बट सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं, तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे। ये खेत बचाओ अभियान 1 से लेकर 30 जून तक व्यापक पैमाने पर चलेगा।
0: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोमती नदी के नाम पर बने INS गोमती युद्धपोत के कारण लखनऊ का नौसेना से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण के जरिए देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है।
2: 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध 1 हफ्ते में दूर कर लिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक मानक तय कर दिया है जो कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है ये जाहिर कराता है। ये बातें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान कही। इस वर्ष रक्षा अकादमी ने कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं, उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें वे उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। राज्यपाल आज रविन्द्र भवन के के जीवन में संवेदना का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। ममता और करुणा का मोल पैसों से कहीं ज्यादा हुआ करता है, इसलिए भावी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए कभी भी उन लोगों को नहीं भूलें जिन्होंने आपका

सहयोग किया है। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में उत्साहजनक बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के आंकड़े बताए गए हैं। ये सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया, जिसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवार शामिल हुए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 88.6% से बढ़कर 2023-24 में 90.6% हो गए हैं। बात मौसम की करते हैं। बारिश की आशा लगाए नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अगले 4 से 5 दिन के भीतर केरलम और तमिलनाडु में मानसून के पहुंचने के लिए वातावरण की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रहे हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप और कन्याकुमारी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मानसून आगे बढ़ रहा है। इधर नौतपा के बीच मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष इलाकों में खासी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में तो रातें भी बहुत गर्म रही है। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी क्रम में राजगढ़ में 42, खरगोन में 41.6, भोपाल में 40 और इंदौर में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मंडला जिले में आज वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव अनुश्रवण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कान्हा टाइगर रिजर्व में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक बैतूल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज नगर पालिका बैतूल अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहडोल जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी लक्ष्य से अधिक हुई है। 25,000 मीट्रिक गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस साल 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सीहोर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,555 चेक डैम निर्माण, 10 तालाब निर्माण, 17 सोसर निर्माण और 4 तालाब गहरीकरण जैसे कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किए गए हैं। नीमच जिला चिकित्सालय के रेडक्रॉस सभागार में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस बघेल ने आज जिला अस्पताल झाबुआ के ब्लड स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया और आमजन को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल छोड़ चुके या नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हार्निया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समय पर उपचार के लिए इंदौर में 2 दिवसीय निःशुल्क हार्निया जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना। और मानसून ने पकड़ी है रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: या और बिन्ना पंचोखो सतीश साहू
1: और सुनील राय दो जनों की दो ही हाथ जोड़े की राम राम, राम। और बड़े भज्जा आपके लाने भी हमारी दो ही हाथ जोड़े की राम राम पहुंच जाए।
0: बिल्कुल सुनील भैया आपको भी हमारी राम राम पहुंच जाए। और अपन सब जनों को बताएं कि बोई भैया अच्छी अच्छी जानकारी माने भेंट वार्ताएं लेके कछु जो है लोकगीत लेके जो अपने रोज के क्रम है अनाज भाव मौसम जानकारी एक ही लेके और संगे भैया दिन दिवस की जानकारी लेके हमारे एक बार फिर किसानवाणी कार्यक्रम में हाजिर हो गए हैं। तो सुनील भैया शुरू करो आज के एक दिन दिवस विशेष से।
1: बिल्कुल आज का ही 30 मई 30 मई को ये गोवा राज्य की स्थापना दिवस मनाओ जाते हैं और 30 मई 1987 को गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य को दर्जा मिलो हतो।
0: बिल्कुल
1: एक पहला 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा हुआ तो और क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत को सबसे छोटो राज्य है लेकिन जो अपनी अनूठी संस्कृति के लाने बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा की खूबसूरत बीच कहा है पुर्तगाली वास्तुकला शानदार पर्यटन के लाने पूरी दुनिया में जानो जाते बड्डे।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया और यही से हर साल अनगिनत जो है पर्यटक उते पहुंचत हैं। और अब आते सुनील भैया अपन आज के दूसरे दिवस विशेष पे तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और जो भैया काय के उपलक्ष में मनाओ जात है आज ही के दिना माने 30 मई सन सुनियो सुनील भैया 1826 30 मई 1826 को हिंदी को पहलो समाचार पत्र प्रकाशित भाव तो
1: 1826
0: हाँ 1826
1: कौन सो समाचार पत्र है तो
0: एको नाम है तो भैया उदंत मार्तंड और उदंत मार्तंड को अपने किसान भैया बिन्ना हरे अर्थ भी समझ वो चाहत है प्रश्न उठता थे भैया तो एको मतलब होता है भैया उगतो भाव सूरज है ना। तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रकाशक और संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल हते एको प्रकाशन कलकत्ता जो उनको अपन कोलकाता कहते हैं उतें से हो तो और हर मंगलवार को प्रकाशित हुए बारे ए अखबार में हिंदी भाषा के ब्रज और अवधी भाषा को मिश्रण हो तो। अब देखो एक और सुनील भैया खास बात
1: बताओ बताओ
0: ए पत्र वितरण में अंग्रेजों द्वारा लगातार डाक शुल्क में छूट न देवे के कारण एको 1979 और आखिरी अंक दिसंबर 1827 में प्रकाशित भाव भैया माने जो बंद होगा तो जे अंग्रेजों के अत्याचार हते और ए समाचार पत्र के पहले अंक की 500 प्रतियां जो है प्रकाशित भई थी। यही उपलक्ष में भैया आज हमारे जो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं सज्जनों को की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल बड़े और कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ के पहले कहने संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्दन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द उल्धन पिपरिया इलाई बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
3: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट अत्याधुनिक आईसीयू एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ संपर्क करें 07582472000।
4: इस रविवार सुबह 8:30 बजे सुनिए स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित बाल सभा

0: बड़े बहुत ही उम्दा आपने जो लोकगीत तो सुनवा एक हूँ गा रहे थे हरि नारायण अवस्थी।
1: बिल्कुल। और भैया एक बार फिर अपन थोड़ा सा विराम लें, पहले सुनते हैं जो एक महत्वपूर्ण संदेश।
0: हाउ बड्डे।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: तो सुनील भैया, जो अपन ने महत्वपूर्ण संदेश सुन लो और अब क्रम होते है किसान वाणी में जानकारी वालों।
6: बिल्कुल, बड़े ही के पहले सभी किसान भैयाओं को बहुत ही बहुत स्वागत है और क्रम में किसान वाणी में का सुनवा चाहत। सबसे पहले
5: अपन सुनवा रहे हैं भैया एक भेंट वार्ता, जो को विषय है जायद के मौसम में सब्जी फसलों को उत्पादन और रख रखाव, और ए में जो अपनी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पारुल मेहरा, उनसे बतकाव कर रहे हैं अपने दीपक निषाद जी।
6: अपन सुने लिए थे।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और हम सभी जानते हैं कि गर्मियों का समय चल रहा है और ये समय होता है जायद की फसलों के उत्पादन के लिए। तो जायद के सीजन में हम सब्जियों की कौन कौन सी फसल ले सकते हैं, उनकी देखरेख कैसे कर सकते हैं, मुनाफा कैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी वैरायटीज़ होती हैं, तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर पारुल मेहरा को। आप उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं और उद्यानिकी महाविद्यालय रहली में आप अध्यापन का कार्य करती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद।
7: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं और भौगोलिक दृष्टिकोण से और मौसम के हिसाब से भी यहाँ की मांग अलग है, तो जायद के मौसम में, जायद के सीजन में बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सी सब्जी की फसलें उगा

0: पाई जा सकती हैं?
1: देखिए, जैसा कि ये जो जैद का मौसम है, ये मार्च से लेकर के जून तक का होता है, और इसमें जो टेम्परेचर है तो मैक्सिमम लगभग 45 से लेकर के 48 डिग्री तक जाता है, और इस समय बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के अलावा बाकी क्षेत्रों में भी जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वह काफी कम हो जाता है,
0: भूजल स्तर
1: जी, और हमें उत्पादन के लिए ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हम इस सीजन में ऐसी सब्जियां उगा सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत ना हो, और साथ ही वे कम अवधि वाली हो, जो इतने ज्यादा टेम्परेचर के बाद भी ज्यादा से ज्यादा हमें पैदावार दे सके। तो इसमें जैसे कि हमारी खरबूजा आता है, तरबूज आता है, ककड़ी, खीरा, करेला और लौकी, कद्दू, और इसके अलावा जैसे गिलकी, तोरई बोलते हैं कई लोग इसे, और काली तोरई होती है जिसे हम इंग्लिश में रिज गार्ड बोलते हैं, कुंदरू भी हम लगा सकते हैं, और बैंगन, टमाटर, भिंडी, भतुआ, चौलाई की भाजी, ये सब सब्जियां भी हम उगा सकते हैं।
0: जैसा कि आपने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी वैसे भी रहती है और गर्मी का समय है तो भूजल स्तर जो होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है, वो नीचे चला जाता है, तो पानी की कहीं ना कहीं समस्या रहती ही है।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो यदि हम इन सब्जियों के उत्पादन में पानी की बात करें तो कितने पानी की मांग होती है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के हिसाब से हम पूर्ति कर सकें और फसलों को नुकसान ना हो, अच्छे उत्पादन को हम ले सकें?
1: जैसे कि हमारा जो तरबूज है उसको लगभग 350 से 450 mm पानी का रिक्वायरमेंट होता है, और जैसे हमारा मस्क मेलन है जिसको हम खरबूज कहते हैं, और हमारी लौकी है उसको लगभग 450 से लेकर के 650 mm पानी लगता है, खीरा हुआ, कद्दू हुआ और बरबटी, इनको लगभग 350 से 400 mm पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और लगभग अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको अभी जितनी भी फसलें बताई इन्हें मैक्सिमम अगर हम देखें तो 800 mm मैक्सिमम पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कम पानी में अच्छे से अच्छी फसल उगा सकते हैं अगर हम इन क्रॉप्स को चुनते हैं तो।
0: जैद की जो फसल होती है या जो सीजन होता है, मार्च से जून तक आपने बताया 4 महीने का ये सीजन होता है, अभी यदि हम बात करें, चूंकि अभी इस वार्ता का प्रसारण हो रहा है, किसान भाई अभी आपकी बात को सुन रहे हैं
1: जी।
0: तो ये जो सब्जियां बोई जाती हैं, इनका उत्पादन लिया जाता है, कितनी अवधि में ये काटने के लिए या बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं?
1: अगर हम तरबूज और खरबूज की बात करें तो इन्हें बोने से लेकर के तुड़ाई तक लगभग 70 से लेकर 90 दिन में ये तैयार हो जाती हैं, और पर बेल के हिसाब से, मतलब एक बेल में कितने फल होंगे उसके हिसाब से देखा जाए तो 2 से 4 फल एक बेल में हमें मिल जाते हैं। जी, अगर हम बैंगन की बात करें या टमाटर की बात करें तो ये भी लगभग 50 से लेकर के 80 दिन में तैयार हो जाती है, और हम इनकी लगभग 10 से 15 तुड़ाई ले सकते हैं। अगर भिंडी की बात करें, भिंडी भी लगभग 40 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। इनकी जो तुड़ाई है 3 से 4 दिन के गैप में हमें इनकी तुड़ाई लेनी पड़ती है, तो लगभग वही 10 से 12 तुड़ाई हो जाती है भिंडी की भी। अगर हम खीरा की बात करें तो इन बाकी सभी में से सबसे ज्यादा जल्दी तैयार होने वाली फसल है, जो लगभग 45 से 60 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी भी लगभग 10 से 15 तुड़ाई हम ले सकते हैं। और इसी तरह से हमारा करेला है, गिलकी है और काली तोरई है, कद्दू है, लगभग हम वही 45 से 60 दिन में इनकी तुड़ाई ले सकते हैं।
0: इन सब्जियों के यदि हम उन्नत किस्म की बात करना चाहें, जो किसान भाई अभी इसकी बुआई करना चाहते हैं और बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप किन किस्मों को सजेस्ट करेंगी, सलाह देंगी, जिसका उत्पादन लेना लाभदायक होगा किसान भाइयों के लिए?
1: रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो वैरायटीज रिलीज करते हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि जो हमारा तरबूज है उसमें शुगर बेबी है, असाही अमातो है, क्रिम्सन स्वीट है, अर्का मानिक है, बादशाह है, ये कुछ तरबूज की वैरायटीज हैं जो हमें अच्छा मुनाफा देंगी इस समय। और जैसे हमारा खरबूज है तो खरबूज में हरा मधु हो गया, पूसा सरबती है, जैसे कि दुर्गापुर मधु, अर्काजीत, ये हमारी खरबूजे की कुछ वैरायटीज हैं जो कि स्वीटनेस में भी काफ़ी अच्छी होती हैं और इनका उत्पादन भी अच्छा होता है और मार्केट में इनका दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। और अगर हम खीरे की बात करें तो पूसा लॉन्ग ग्रीन है, पंत शंकर।

0: खीरा एक, स्वर्ण शीतल एंड पूसा उदय, ये जो ऐसी वेराइटीज हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा उत्पादन
1: दे
0: देती
1: सकती
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, ऐसी क्वालिटी में भी गिरावट नहीं मिलेगी अगर टेम्परेचर,
1: अच्छी गुणवत्ता का
0: जी
1: उत्पादन
0: जी
1: मिलेगा आपको।
0: बिल्कुल। अगर हम जैसे करेले की बात करें तो पूसा दो मौसमी है, फूले प्रियंका है, पूसा विशेष है, अर्का हरित है, कल्याणपुर 12 मासी 7 है। और अगर हम लौकी की बात करें तो लौकी में है कल्याणपुर लॉन्ग ग्रीन है, आजाद हरित है, पूसा नवीन है, काशी गंगा है। कद्दू में बात करें तो काशी हरित, अर्का चंदन और पूसा विशेष है, ये अच्छी पैदावार देती हैं। और इसी तरह से बैंगन है, उसमें पूसा बरसाती है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूसा क्रांति है, पंजाब सदाबहार है। और टमाटर में अर्का रक्षक है। ये जो मैं आपको वेराइटीज के बारे में बता रही हूँ, इनमें कुछ हाइब्रिड्स भी हैं, और इनमें क्या होता है ना, बीमारियों और कीट से लड़ने की भी क्षमता अच्छी होती है, और टेम्परेचर के हिसाब से तो वो अच्छा मतलब उत्पादन देती ही हैं। और ज़्यादातर इनमें से जो वेराइटीज़ हैं उन्हें स्पेशली हमने हाई टेम्परेचर के लिए ही
1: उसके
0: जो
1: हिसाब
0: हमारे,
1: से बनाया
0: हाँ,
1: गया है,
0: बनाया गया, उन्हें उसी हिसाब से डेवलप किया गया है।
1: उच्च तापमान की मार को सहन कर सकती हैं और रोग
0: जी
1: व्याधियों का भी सहन करने की क्षमता इसमें होती है।
0: जी
1: इसमें जो वैरायटीज आपने बताई है, जो किस्में
0: जी
1: आपने बताई है,
0: जी
1: बुंदेलखंड क्षेत्र के हिसाब से आसानी से उपलब्धता जिसकी हो जाए,
0: जी
1: और कुछ उच्च मुनाफा देने वाले किस्मों के बारे में भी यदि
0: जी
1: आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहें तो।
0: जी जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो गर्मी का सीजन है, मतलब जैद का जो सीजन है, तो इस समय सबसे ज्यादा तापमान होता
1: तापमान
0: है
1: रहता
0: और
1: है।
0: सबसे ज्यादा गर्मी इसी समय होती है। तो इस समय अगर हम तरबूज और खरबूज की फसल लेते हैं तो यह हमें उच्च मुनाफा प्राप्त करा सकती है। सबसे पहले तो इनमें लागत भी कम होती है और ऊपर से इनमें पानी की भी उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं
1: नहीं
0: होती,
1: होती
0: लगभग वही 350 से 450 mm पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर ये फसलें लगाते हैं हमारे किसान भाई तो उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। और साथ ही साथ खीरा भी एक बहुत अच्छी फसल है इस समय के लिए, क्योंकि यह सबसे तेजी से बढ़ती है और तेजी से बढ़ने के साथ साथ इसकी मांग सबसे ज्यादा होती है गर्मी के समय में, क्योंकि ये एक सलाद फसल है, तो ये
1: जी।
0: अच्छी फसलें होंगी।
1: आखिरी में चलते चलते मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब्जियों को उगाने के लिए किसान भाइयों को खासकर किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो मौसम के मार को भी सहन कर सकें, पानी की उपलब्धता का भी ध्यान रख सकें, कम पानी भी यदि है तो वो अच्छी फसल अच्छा मुनाफा ले सकें। क्या बताना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, और रोग कीट प्रबंधन भी यदि वो करना चाहें रोग
0: जी
1: व्याधियों
0: जी
1: की स्थिति में तो कैसे निपट सकते हैं उससे।
0: सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ये मौसम शुरू हो रहा है मार्च से लेकर जून तक, तो आपको मार्च नहीं तो फरवरी के एंड नहीं तो मार्च की शुरुआत तक या उसके बीच में आपको फसल की बुवाई कर ही देनी है। अगर आप जैसे जैसे लेट करेंगे तो उससे आपकी जो यील्ड है, आपकी जो पैदावार है, उसमें आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। इसलिए आपको समय से बुवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज अगर हम देखें तो सिंचाई प्रबंधन, उसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस समय क्या होता है कि इस समय टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो हमें मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल में पानी देना ही होगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर की कमी हो जाएगी तो इससे हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। इसलिए हमें मिट्टी में नमी बनाए रखनी होगी। और इसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ भी जा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन जिसमें हम नलियों के द्वारा पानी देते हैं और वो रिसाव से जो हमारा जड़ों का जगह होती है
1: जड़
0: वहीं
1: क्षेत्र
0: पे,
1: में जो
0: जी
1: है पानी पहुंच जाता है और नमी
0: जी
1: बनी
0: जी
1: रहती है,
0: हाँ हाँ
1: और कम पानी भी है तो आप
0: कम
1: कम
0: पानी
1: पानी में
0: में
1: भी आप
0: भी,
1: ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई कर सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ तो हाँ, ये तीसरा और बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण
1: बिंदु है
0: बिंदु है कि हम वैरायटी का चयन करते समय भी ध्यान रखें कि हम कैसी वैरायटी को लगाने के लिए चूज कर रहे हैं। अगर हम ऐसी वैरायटी का चयन करते हैं जो कि गर्मी के लिए या अधिक तापमान को सहने के लिए उगाने के लिए ही डेवलप की है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और एक और चीज है कि मल्चिंग, चौथा पॉइंट मैं कहना चाहूंगी मल्चिंग। मल्चिंग यह एक कृषि या कह ले तो हम बागवानी की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारी मिट्टी है उसमें नमी को बनाए रखने के लिए और उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पौधे के आसपास की जो खाली जमीन होती है उसे हम सूखी पत्तियों से या घास से, भूसे से या प्लास्टिक की शीट से ढक देते हैं।

0: तो उससे क्या होता है, ढकने से जो हमारा सॉइल का टेम्परेचर होता है वह भी काफी संतुलित रहता है और साथ ही सॉइल में जो नमी है वह भी बनी रहती है और जो खरपतवार उगती है वह भी नियंत्रित रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम पानी की एक तो डिमांड है उसको कम कर सकते हैं। और अगर हम कीट और बीमारियों की बात करें, आपको समय समय पर फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। वैसे तो बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प जैविक और प्राकृतिक तरीके को अपनाने में ही होगी, जैसे कि हम नीम का तेल हुआ, हल्दी पाउडर, नीम खली या कंपोस्ट, या हम स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं कि पीले कलर के और नीले कलर के स्टिकी ट्रैप होते हैं वह भी लगा सकते हैं। और अगर हम
1: पीला प्रकाश प्रपंची से बोलते हैं
0: जी, और अगर हम बदल बदल करके फसल ले रहे हैं तो और भी बेहतर होगा। और अगर हम सह फसली खेती भी करें, जैसे कि हम कुछ लाइन अगर हम मैरीगोल्ड की लगा दें, फिर हमारी जो मेन फसल है उसको लगाएं, या फिर हम लहसुन लगा दें, तो इससे भी जो हमारे कीट है नियंत्रित रहेंगे। और छठवां बिंदु है कि हमें तुड़ाई समय पर करनी है। अगर हम समय से तुड़ाई नहीं करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी में कमी आएगी तो क्या होगा कि आपको उतना अच्छा दाम नहीं मिलेगा। तो आपको 2 से 3 दिन या 4 से 5 दिन के गैप में आपको तुड़ाई करते रहना होगा। तो यही थी मेरी कुछ टिप्स, जिनका ध्यान रखते हुए खेती करते हैं तो आपको जरूर एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। और वैसे भी जैद का सीजन माना जाता है कि यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बहुत ही अच्छा स्रोत है।
1: जैद का जो सीजन होता है वो मुनाफे का सीजन होता है और किसान भाई इससे अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं खरीफ और रबी सीजन के अलावा। तो जैद के मौसम में बुंदेलखंड क्षेत्र में सब्जी फसलों का उत्पादन आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, इसके लिए तमाम जो उपाय हैं किसमें हैं आपने बताया, रोग व्याधि प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और पानी का प्रबंधन कैसे बेहतर कर सकते हैं, तमाम उपाय आपने बहुत ही विस्तार से बताए। डॉक्टर पारुल मेहरा मैम उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं, आप उद्यानिकी महाविद्यालय रहली से हमारे बीच में आप आई और आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी सलाह दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: देखियो बड्डे निषाद जी ने बड़ी बारीकी से पूरी बातें निकाल ली कि अपन को जैत की फसलों में कैसे लाभ लेने हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: और कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो प्रगतिशील किसान से बातचीत करी हमने।
3: बिल्कुल भैया, तो जे प्रगतिशील अनिल नायक जो है किसान हैं और इनको भैया गुड्डू चौबे के नाम से भी जाना थे, तो इनसे करी गई आपकी बातचीत अपन किसानों को सुनवाऊ थे।
2: हाउ बड्डे। आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में आज अपने बीच प्रगतिशील किसान ग्राम बमोरी ढूंढड़ से पधारे हैं गुड्डू चौबे। गुड्डू भैया बहुत ही बहुत स्वागत है आपको, नमस्कार।
4: राम राम सुनील भैया।
2: तो सबसे पहला तो आप जा बताओ कि जो अपन ने जड़कारे में कौन कौन सी फसलें बही थी।
4: पिसी बही थी अपन ने गेहूं और चना और तनक मसूर, साग की भाजी भी लगा ली, कछु धना आना बेदा मेथी से घर को काम चलाते रहते, मिर्चे की पीढ़ी लगा ले तो सूख गई मिर्चे, सो भी काम ही आ जाए।
2: आप जो है साग भाजी भी लगा ले तो कम से कम घरे खावे साग भाजी हो गई और मिर्ची भी हो गई, सूख गई तो पूरे साल भर के लाने हो गई कहानी, क्या अच्छी बात कहानी। अच्छी उम्दा आसों फसलें आई कहाँ
4: सुनील भाई, जब फसलें तो अच्छी आई है, बार
2: प्रकृति देवी की अच्छी कृपा रही कहानी,
4: भाई अच्छी पैदावार भाई, चना भी अच्छी पाजी, जो उनके ज्यादा बाए थे तो चना की पाज भी अच्छी भाई, मसूर की पाज भी अच्छी भाई और रेट भी अच्छे चल रहे मसूर के, और शासन की योजना भी है, शासन भी खरीद 7,000 कछु है रेट मसूर को और चना को है
2: 5,875 रूपए,
4: और गेहूँ के बाजार में कम रेट है मनो समर्थन मूल्य पे ले 2,625 की गेहूँ भी अच्छी बिक रही है हिसाब से।
2: क्या बात हो गई, आपको पैसा तो अच्छे मिले जा रहा है। मनो जा कहा कि अपन जो पिसिया काट ली और नरवाई को का करो अपन ने।
4: अब सुनी भाई जा, हम तो नरवाई को जलात नहीं है और हमारे गांव में भी नहीं जलात, बहुत जने कछु आदमी धोखे से लग जाए बिजली बिजली से तो बात अलग, लेकिन नरवाई नहीं जलाओ तो गहरी जोताई करवा दे, सो में भी दब जात पेलाऊ करवा दे। सो अपन तो यहाँ सो करें सुनील भज्जा, जैसे अपनी 30 एकड़ जगह है तो 7 एकड़ में करवा दो, 8 में जितो पारिशी बाने कई बार करवा दो अंगली साल दूसरी जगह वहां सो ज्यादा बजाय नहीं पड़त, वो पैसा लगत नहीं ज्यादा लगत और अपनी पलटी हो जा जमीन की, और ऐसो कहत कोनो खेत में नहीं चल पाओ पिलाऊ तो अपन ने बखन्नी करी, वो बखन्नी के बाद रोटा बीटा चलवा दी तब।
2: अच्छा।
4: हमने जो अनुभव करो बहुत अच्छो खाद लगा था बस कारी में।

0: खन निकाल कर रोटा बीटा चलवा दे तनक लग गए लगा थे दो एक आदमी कर जाते दो घंटा में नरवाई भर पीसने से ऊपर ऊपर फेर दे बहुत बढ़िया खेत बन जात भर भरो।
1: अगर जोन प्लाव नहीं करवा पा रहे हैं तो रोटावेटर फेर दे सुबह ओखो पूरा मीड दे है चुरकन कर दे है बाद में बा
0: बस कार्य में गाल आते
1: बस कार्य में खाद बनाते रहे। बहुत बढ़िया बात करी कि नरवाई को प्रबंधन आपने ऐसे कर लो। अब समय आ गया है कि धीरे धीरे करके बसकारो शुरू हो वारो आषाढ़ लगवे वारो हो जाए है कछु समय पश्चात। अब अपन को बोनी भी करने हैं तो अब बोनी की कैसी का तैयारी रखे हैं अपन
0: घर को बीज है अपनो तो बना के तो पहले ही से रखत तो जैसे अपन 10 बोरा बाऊने तो बोरा दो बोरा नाव भी ले लेते हैं कोशिश करके जो अपनो तना काम को बेच जाते तो जो बेच के अपन ने नाव ले लाओ और एक हो पहले ही से अपन जैसे थ्रेसर भाई वो घामे में दो दिन धूप उप दिखा के अपने जूट की बोरों में वो लाइलोन की बोरी में रखा तेसो उंगा ते नहीं तो वहां दो बीज तुम्हारे बाजी को सुनो के जूट की बोरी में रखो तो वो में रख दे तो अंकुरण अच्छो होते और अपन तो यहाँ सो कहते अब हमारे दाने गिरे गए तो हमने 100 डाले थे तो 90 होंगे 70-80 लोग होंगे तो अच्छो मान
1: अंकुरण परीक्षण कर लो आपने काय को अंकुरण परीक्षण करवा कहा है आपने
0: सोयाबीन।
1: अच्छा कौन सी किस्म को?
0: अब जो अपन ने 22-12 है अपने थे और 21-72 है और 2-3 सोयाबीन और लेना है सुबह थोड़े थोड़े अपन ले ले हैं हम 0-23-3 सोच रहे हैं और 24-33 है तो एक एक बोरा ले लें तो अगली बार को बीच को जो जो पिछलो है एक बदल दें माने 2 साल बीज चलाते हम फिर उसके बाद दूसरा ले लेते।
1: बहुत बढ़िया बात करी गुड्डू भैया आपने कि एक ही बीज पे और एक ही जगह अपन उन्हीं को न लगाते रहे बीज भी न लिया सोयाबीन को अपन देख रहे हैं कि कई सालों से सोयाबीन अपनों उतनो नहीं फलत अगर पुराने बीज लगा रहे अपन जैसे 335 अपन पहले लगाते अच्छो पजा तो मनो अब नई नई किस्में लगा रहे हैं और तर बदरा करके जमीन बदल के अपन लगा रहे हैं। आप बहुत उम्दा काम कर रहे हो जाते हो अपनी सोयाबीन की बात एक के संग और कछु सोई लगे हो कि जैसे सोयाबीन बैठ गयो तो कछु और जड़कारी की फसलें हैं
0: हमारे गांव में सब में गोभी लगा लेते हैं।
1: अच्छा
0: कछु सपोर्ट वो सब मिल जाते हैं को भगवान चाहे तो अच्छा पैसा मिल जाते हैं टमाटर वमाटर कछु ना कछु तो करने पड़ते हैं सोयाबीन को भरोसा नहीं है और मका को भी भरोसा नहीं है मका भी लगा लेते हैं आदमी मनो हम तो एक आधे एकड़ में लगा देते हैं ना हमें मका में नहीं उतो पड़ता था दाम भी कम मिला थे अपन तो जो साग भाजी को कर गोभी हमारे गांव से बिक जाते हैं वो सब ही लगा हुए बीज बीज लेके रख लो गोभी को।
1: बहुत बढ़िया मैंने जा बात कहा है कि आपको बमोरी ढूंढर सानोदा डोंगासरा जे कहा है कि जे सब जगह उद्यानी की फसलें कहा है सब्जी भाजी वे आप उन्हें लगात कहा ने और बाहर बाहर से सब जगह से थोक में चली जाते हैं गाड़ी के गाड़ी भर के और अपन को उपज के दाम बहुत अच्छे मिल जाते हैं जे सब लगाने इनके संगे अपने लाने खाद की व्यवस्था भी करने पड़े थे। सबसे पहले हम जो जानवर चाह रहे हैं आप कि अपने पास पशु कितने हैं?
0: 3 भैंसे हैं 2 गाय हैं सो गोबर भी अपनो हो जाते हैं। सो अब हम पहले खाद अपन चेता ही में डाल देते जब से आकाशवाणी से सुनो है कि पहले से खाद डाल दे तो वो खराब हो जाए तो अब हम और खाद नहीं डालो हम खाद जब गए हैं जब एक दो डोंगरी गए जाते हैं जब खाद डाले थे ना वो तत्व पूरे उड़ जाते उनसे कंडीसी मचाती से कछु फायदा नहीं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब या तो डाल देते हैं कछु कान बस ब्याह में आओ आगो तो जगह सफाई करने तो छायरी में धार दी था मोरे ना कछु से ढांक दे ना पीढ़ी तरह डाल जाए।
1: बहुत बढ़िया बात है मैंने गड्ढा करके अपन खाद बना के धरे हैं और जब डोंगरे गिर हैं आषाढ़ के शुरुआत में तो अपन जो है खेत में छटक दे हैं उनको
0: तो अब तक यारी आगे की फसल की चल रही है हमारी समस्या नहीं सोचा स्वम हालू किसान मानी
1: आपके बारे में फोन आते हैं मूल बात रहते है कि अपन को रोज खर्चा को पैसा चाहना जैसे दूध हो रहा कछु सब्जी भाजी हो रही तो अब दूध से भी अपनों कछु काम चल जाते दूध घी सब्जी भाजी तो ये कितने सहायक रहते हैं किसानी के संगे?
0: किसानी में तो 6 महीना में आओ जो फसल किसी चना को क्या तो लगा ली सब्जी वब्जी तो अभी तो माओ काम चले अन्य भैंस रख ले बोकार रख ले हम कह रहे मुर्गी मुर्गा कछु न कछु और सपोर्ट चाहे संगे।
1: अब आ गई रासायनिक खाद की तो आपने मिट्टी परीक्षण करवा हुए का?
0: मिट्टी परीक्षण हमने करवा तो हमें फायदा भी भाई जो बताई थी ग्राम सेवक ने कि जतमा में जा कमी है तो वो अपन ने कर दो तो सोयाबीन में तो हम रासायनिक बिल्कुल बंद कर दो जो भी अनुभव देखो है कि DAP अपन मिलाते तो पानी यानी गिरत तो बहुत आदमों की शिकायत हो जाती कि हमारे तो सोयाबीन उंगो लंगो को कछू तो हम खाद सोयाबीन में बिल्कुल नहीं मिला सिंगल सुपर फास्ट से छिटक दी बखंडी में सो ओसन जेला के मिला के कछु हद तक फायदा रहता मतलब DAP हमने वो टोटली बंद कर दो सोयाबीन में।
1: आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट को उपयोग कर लेते हो सोयाबीन की उत्पादन बहुत उम्दा ले रहे हो। अब बात जा आ जाते कि अब

0: जन कूपन रहते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, फिर से अपन उनको पोर्टल पे कर लो और जौन सो भी खाद चाहने हैं जैसी फसल के हिसाब से वैसे अपनों खाद अपन को मिल जाते हैं। कि सोयाबीन के उत्पादन आप ले रहे हो अपने अनुभव से आपने बताओ कि हम सिंगल सुपर फास्फेट से ले रहे हैं, और कछु ऐसी बात रह गई हो जो आप हमारे किसान भैया और उसे कह चाहत हो
1: कि जैसे अपन सोयाबीन तो बेच रहे या मक्का लगा रहे तो बात तो ठीक है, मानो कछु कछु और कछु भी करो और दा है तनक मनक राहर को रोहा लगा दे
0: ज्वार
1: रामतिली या थोड़ी बहुत जैसे 5 एकड़ जमीन है तो 1 आधे एकड़ में जुनार भी करो भी कितनी 40 रुपया किलो 50 रुपया किलो बिकाई थी जुनार तो जुनार भी बह दे। और हमारे सब किसान से क्या वो है समय चल लो गड्ढा खदोले पेड़ जरूर लगाओ चाहे कछू के पेड़ लगाओ फलदार लगाओ चाहे कछू वो सब भी दो आप पैसा मिला था अपन हो चाहे मुनगा लोग के लगा दे।
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात करी गुड्डू भैया की मुनगा के ऐसे बीज आ गए हैं कि जो 6 महीना में बड़े हो जाते और 6 महीना में फलिया दे सकते और साल में 2 दारे फलते हैं। और मुनगा की तो अब जा बात आ गई क्योंकि पत्ती भी बिक रही हैं और कोसे तो बिक ही नहीं है। तो गुड्डू भैया आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे किसान भैयारों के लाने आपने अपने अनुभव बांटे, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। जयराम जी भैया।
1: जयराम जी भैया।
2: तो सुनील भैया देखो कितनी अच्छी जा भेंट वार्ता रही प्रगतिशील किसान अनिल नायक गुड्डू चौबे से, आपने जो बतकाव करो उनने अपने अनुभव बताए और अब आगे का सुनवावे की हो रही भैया तैयारी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बड़े बहुत बढ़िया बातचीत राखी हमने, हम जो सोच रहे हैं कि भजन न सुन ले अपन।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: एक हों गा रहे हैं कृपाल सिंह पायक।

0: श्याम भाजी में राजी विदुर घर की। देखो भैया, कहूँ अपन भी भोजन पानी करत हैं तो भोजन पानी को स्वाद छोड़ के आत्मा को प्रेम देखो चाहिए के कितो है।
1: बहुत उम्दा बातचीत रखी आपने।
0: और सुनील भैया, अब अपन सभी किसान भैया हरों से जई के हैं कि अपनी जो है आगामी फसलों की तैयारी समय से करें, जो खरीफ की फसलें उनको लगाने हैं। और अब किसानवाणी कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा है तो आज के अनाज भाव की जानकारी बता दी जाए।
1: बिल्कुल बड्डे, देखो पिसिया रही है आज 2350 से लेके 3905 रुपया। चना रहा है 5200 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर 6000 से 9000 रुपये प्रति क्विंटल। बटरी 4000 से 4300 रुपया। सोयाबीन 6500 से 7700 रुपये प्रति क्विंटल। और मटर हरो वारो 2500 से 3900 रुपये प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो आपने की जानकारी दे दी आज के अनाज भावों की। और अब आज के मौसम की जानकारी भी सुनील भैया दे देते हैं। तो आज को अधिकतम तापमान रहो 39.4 डिग्री सेल्सियस, माने थोड़ी सी राहत रही भैया। न्यूनतम तापमान में भी राहत रही, जो रहो 22.3 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्रता की बात करें तो सवेरे 8:30 बजे की 54% और संजा को 5:30 बजे की 27%। तो सुनील भैया, यही जानकारी के संगे अब आज के किसानवाणी कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा है। घड़ी कह रही है उठ जा भैया हरो, अगलो कार्यक्रम होने हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनो, अपन आगे के कार्यक्रम जरूर मुलाकात करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अब सब जनों से लेते हैं अनुमति। सभी जनों को सतीश साहू
1: और सुनील राय, दो जनों की दो हाथ जोड़े की राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर की ये रचना जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के स्वर में। मदन मोहन ने इसे स्वरबद्ध किया है और फिल्म का नाम वीर जारा।

0: इस रविवार सुबह 8:30 बजे सुनिए स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित बाल सभा।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदी वर्ग की शब्दशना कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। क्रिमिनल फिल्म से ये गीत हमने लिया, इसे स्वरबद्ध किया MM क्रीम ने।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा के स्वर में समीर की लिखी हुई ये शब्द रचना। इस गीत को संगीत से सवारा है आनंद मिलिंद ने और फिल्म का नाम सुहाग

और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत। इसे संगीत से सवारा आर डी वर्मन ने और फिल्म का नाम सागर।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। सबसे पहले आपको सुना रहे हैं पंकज उदास के स्वर में जमील मुजाहिर का ये गीत।

0: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: आइए अब सुनते हैं चंदन दास के स्वर में ये गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 8:45 होने को है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात

गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में शामिल होंगी कुछ फरमाइशें जो हमें पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई और कुछ व्हाट्सएप फरमाइशें। सबसे पहले ये व्हाट्सएप फरमाइश शामिल हो रही है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतेश, प्रतिशा संधु और मैक्स। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, जोनल सोनल, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। इसी गीत को सुनने के लिए हमें एक पत्र भी प्राप्त हुआ। करणवीर हाउस भुंजो कैंजिया बटेंडा पंजाब के ये श्रोता हैं। परेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत का आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं। सुनते हैं गाइड फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मंच है गीत कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अगली फरमाइश इन श्रोताओं ने लिख भेजी व्हाट्सएप पर। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी ने घर पर मीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अवान अब्बासी, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, अंशुमन, ओबी, सुभाष, सदानंद, नीरज और विराज का आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है लोफर फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

0: इस रविवार सुबह 8:30 बजे सुनिए स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित बाल सभा।
1: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार 5:30 बजे पर आकाशवाणी सागर से।
2: मन चाहिए गीत कार्यक्रम की अगली फरमाइश इन श्रोताओं की। व्हाट्सएप पर ये संदेश लिख भेजे पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू ने। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत, रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद सारिम। बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। एक और संदेश बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन के श्रोताओं ने भी भेजा है। विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूड़त ने। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं दी ट्रेन फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: अगला गीत सुनते हैं तेरी कसम फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी अमित कुमार और लता मंगेशकर ने और इस गीत को सुनने का अनुरोध हमसे किया इन श्रोताओं ने। व्हाट्सएप संदेश पढ़ते हैं पहले फिर पत्र। व्हाट्सएप पर ये संदेश भेजे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल शर्मा, जसवीर, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, मीन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर इमेकर, प्रमोद और प्रदीप इमेकर, विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल। एक पत्र भी प्राप्त हुआ है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक का। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं तेरी कसम फिल्म से ये गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में।

अगला गीत सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। इस गीत को आवाज दी लता मंगेशकर ने और फरमाइश करता है आप सभी श्रोता चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, जिला मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, यदि आप भी अपने फरमाइश के फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ फिल्म का नाम, गीत के बोल लिखकर भेज दीजिए हमें इस नंबर पर 9770 43 22 97। फिर से सुन लीजिए 9770 43 22 97। और अब कार्यक्रम मन चाहे गीत से चंचल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी सागर है। 9:30 होने को है अगला प्रसारण मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।
1: सच

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे, क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे। जैसे कि ये

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं हैं और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: केके को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, लाइफ में कभी कभी, और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं उन्होंने सारे मेरे, जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो है एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की।
1: आज के फनकार।

0: दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपनी ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।
1: कहां से लाई हो जान।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहाँ उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई तौबा।

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: भैया
1: बैठा चुप है भैया
2: मेरा भैया
3: हाँ हाँ तेरा भैया हाँ हाँ मेरा भैया
2: भैया भैया बोलो भैया
0: बोलूं क्या मैं अरे बोल कन्हैया

0: क्या बताऊं क्या क्या देखा मैंने, तुम्हारी भाभी है ढूंढी, तुम ढूंढ के लाओ मेरी भाभी।
1: मैं भाभी ढूंढ के लाऊं? छी, मुझे शर्म।
2: बोली सावन की रात,
0: ओ बड़ी पावन है बात,
2: ओ रंग खुशियों ने पहने गुलाबी,
0: ओ मैंने देखी है होने वाली भाभी।

0: दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।